तब आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी होंगे कि कौन जीता कि नहीं भी जीता। कोई बात नहीं, आप बस हमें सुनते रहिए, बिकॉज हम पे हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। बढ़िया, सभी के लिए बने रहिए। मेरा नाम केतन है और 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ अभी से। चलिए एंजॉय करते हैं आज फ्राइडे को और भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं प्री वीकेंड की तरफ। बचाओ क्या?

0: होमसिक रेमेडीज में आपका स्वागत है। अगर इफ यू हैव एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर विद मी रिगार्डिंग होमसिक रेमेडीज तो 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे बता सकते हैं। बट यस, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। बट यस, द टॉपिक इज द सेम, होमसिक रेमेडीज, जहां पे ऑकलैंड की इस कड़कती ठंड में जब बिल्कुल अकेलापन अगर आपको लगे तो किसी महंगे कैफे में जाकर वार्म कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि होम सिकनेस की सबसे जो सस्ती और बेस्ट दवाई होती है वो होती है घर के पास वाले कोई भी देसी इंडियन ग्रोसरी स्टोर। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, जब दिल उदास हो तो बस गाड़ी उठाओ और चले जाओ, लिटरली मत उठाना बट गाड़ी में बैठ के थोड़ा ड्राइव करो और पहुंच जाओ किसी इंडियन स्टोर के अंदर। वहां एंटर करते ही जो वो हल्दी, मिर्च और गरम मसाला के मिक्स खुशबू आती है ना, कसम से दिमाग का आधा स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाता है। और वहां बैकग्राउंड में चल रही किसी पुराने बॉलीवुड गाने को सुनो, आइल्स में घूमते हुए $10 के पाले जी या फिर मैगी का पैकेट उठाओ, 10 नहीं मेरे ख्याल से उससे सस्ते पड़ता होगा, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी टाइम हो गया मैंने खरीदा नहीं है। और काउंटर पर खड़े उस देसी अंकल या फिर आंटी से थोड़ी देर हिंदी या पंजाबी में बातें करो या फिर गुजराती में या फिर जो भी बंदा हो, जिस भी रीजन से हो, इंडिया से या फिर फीजी इंडिया से या फिर कोई भी अलग कंट्री से, तो यस वहाँ उसके साथ बहुत ही सुकून मिलता है इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग इंग्लिश। वेल, लगता ही नहीं कि हम इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर किसी आइलैंड पर हैं। जब भी घर की याद अगर आपको सताए तो रोना बंद करो और अपने नज़दीकी देसी स्टोर जाकर 15 मिनट स्पेंड करो, आपका मूड जो है ना एकदम फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, वहाँ से एक पैकेट रस्क जरूर ले लेना और उन्हें कहना कि प्लीज लिसन टू लंच बॉक्स शो जहाँ पे केतन बहुत अमेजिंग आइडियाज देता है। बट यस, माई पॉइंट वॉज टू टेल यू अबाउट होम सिकनेस, कैसे आप भगा सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे एंड आई एम प्रीटी श्योर वो हर एक चीज़ इंडियन की, इंडियन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ होगी वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो यस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सो दिस इज़ एक बार आप ट्राई करिए एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑकलैंड में आप कहीं पर भी रहो हर जगह आपको इस तरह के इंडियन स्टोर्स दिखे जाएंगे। ऑकलैंड क्या, मेरे ख्याल से आप किसी भी शहर में जाओ न्यूजीलैंड में, अब तो हर जगह हर सिटी में आपको इंडियन स्टोर मिलेगा ही मिलेगा। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा, Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. What if your next holiday wasn't just a holiday?
5: But the adventure everyone talks about.
1: Imagine chasing waterfalls,
5: wandering lush rice terraces,
1: catching unforgettable sunsets,
5: and relaxing at iconic beach clubs.
1: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
5: discovering incredible temples,
1: tasting world-famous street food.
5: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
6: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary राहत फतेह अली खान live in concert along with शाहजमान अली खान Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz or sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
1: The
9: Right now, in midwinter, with ills, chills, the short week, and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
10: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
11: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: So jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. To deer mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.

Well, office shout out के segment में स्वागत है. Hey Ketan, ये message आया अभी मेरे को. Hey Ketan, there is one thing about the corporate culture here that I just cannot wrap my head around. Whenever there is a massive crisis at the office or the workload shoots through the roof, my Kiwi colleagues just casually shrug and say, "No worries, mate. Sweet as, bro." My brain is literally melting from the stress inside, and these guys are acting like everything is walk in the park with their constant sweet ass overload. Honestly, all I want to do right now is walk out, drive straight down to Dominant Road and down a cup of strong piping hot desi chai. That's the only thing that is going to save my sanity today. Wow, that was insane. I mean, काफी intense भी था यार. पूरा मेरे को लगता है कि पूरा जिगरा इन्होंने बाहर रख दिया है अपने फोन पे टाइप करते हुए. बट होप एवरीथिंग इज ओके ब्रो. आपने अपना नाम तो लिखा है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. बट यस यस, ये क्वाइट कॉमन भी है. आई मीन ऑब्वियसली इनका वर्क कल्चर में, मुझे लगता है इनके वर्क कल्चर और हमारे वर्क कल्चर में बहुत ही जमीन आसमान का डिफरेंस है. दे रियली डोंट केयर अबाउट व्हाट विल हैपन, दे जस्ट एंजॉय द प्रेजेंट. वी ऑल्सो एंजॉय, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो थिंक अबाउट द फ्यूचर एज वेल. तो मिक्स रिएक्शन मिलना पॉसिबल है इसमें. काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई जब हमारे हाथ में ही नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर, देन वाई वी आर थिंकिंग अ लॉट. बट ऑन अदर साइड ये भी लोग कहते हैं कि जब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, देन वाई डोंट यू जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो एटलीस्ट जो सही नहीं हो सकता है वो भी अच्छा हो सकता है इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो ये सब कोर्स मिक्स रिएक्शन है. आपका क्या कहना है इस पर? जो भाई ने भेजा है मैसेज उसके ऊपर अगर इफ यू वांट टू शेयर सम रिव्यू सम व्यूज ऑफ योर्स, 5599 द नंबर. लंच बॉक्स विद केतन. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे. हाय हाय हाय हाय, टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। पेरी द वॉन्डरर एक एयरडेल टेरियर डॉग था जो 1930s में वेलिंगटन न्यूजीलैंड के फेमस लोकल हीरो बन गए थे। अपनी ओनर की डेथ के बाद वो वाटर फ्रंट पे घूमता रहता था और सेलर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और वर्कर्स का फेवरेट बन चुका था। लोग मिलकर उसके डॉग लाइसेंस पे करते थे और पैडी शिप्स और टैक्सीज में ट्रैवल करता भी था और 1935 में एक एरोप्लेन में भी उड़ा था। 17 जुलाई 1939 को उसकी डेथ हो गई और उसके बाद वो वेलिंगटन के क्वींस वॉर्फ के पास एक मेमोरियल और ड्रिंकिंग फाउंटेन बनाया गया। वाओ, दैट्स सो स्वीट यार, दैट्स सो स्वीट। पर एक बस अजीब सी चीज़ ये लगती है मुझे कि यार जो भी अच्छे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक काफ़ी लोगों को डॉग्स पसंद होंगे, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। सिर्फ आई थिंक व्हाट उनकी 10 या 12 साल, मतलब 8 से 12 साल के बीच ही लाइफ होती होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जितना मेरे को पता है। जितना बड़ा डॉग साइज में उतनी उसकी लाइफ कम होती है और जितना छोटा जो है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इज़ दैट ट्रू? डू लेट मी नो। 555 ट्रिपल 9 पे।

वेलकम बैक। आप जल्दी से रुआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके पॉडकास्ट सेक्शन में आप जाइए और आपको मिल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कि कौन कौन से पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, या फिर एक नया पॉडकास्ट हमने लॉन्च किया है उसको सुनने के लिए आप हमें 5599 पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए। शनील लाल LGBTQ के राइट्स, क्या रेसिज्म होता है और रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी के बारे में उन्होंने काफी डिटेल में बात की है। सो यस, मेक श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को जरूर सुने, काफी नॉलेज वाली बातें उन्होंने बताई है, प्लस काफी आई ओपनर वाले भी बातें बताई कि LGBTQ जो ग्रुप है उसको क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। सो डेफिनेटली आप ये पॉडकास्ट जरूर सुनिए। साथ में यस, मेरा गाना एज आई ऑलवेज मेंशन कि मेरा गाना जो है सफाई 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड ऑलरेडी। आप जल्दी से जाइए यूट्यूब पे और सफायर केतन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर मेरे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे वहां पे मिल जाएगा। हम के पेज पे भी हमने डाला है, बट हम पे ऑब्वियसली इतनी इन्फॉर्मेशन है, यू मे नॉट बी एबल टू गेट इट, बट स्टिल आप जाइए और आपको 2-3 आई थिंक 4-5 इन्फॉर्मेशन उसके बाद आपको मिल जाएगा। बट जो भी आपके लिए कन्विंस है आप वो ट्राई करिए और मेरा गाना सुनिए, और प्लीज़ वहाँ पे YouTube पे जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करना कि आपको गाना कैसा लगा। इट्स गोना बी ग्रेट फॉर अस।

0: दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: If you're at the finish stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
5: Thank you.
6: It's all I can think about.
5: What does it sound like?
6: Yeah, I'd rather not.
5: Go on, why don't you have a crack?
6: Okay, got a plumbing problem.
5: Oh, I need a bit more than that.
6: They've got your back.
5: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
6: Oh, okay.
7: There's no better plumber to give it a crack.
5: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
6: No. I want a plumber.
8: Advertise with
9: MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
10: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
11: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Light the way with 20%

0: चटनी शॉट्स।
1: सेंट्रल हेस्टिंग्स हॉक्स बे में एक सीरियस डॉग अटैक हुआ जिसमें एक इंसान को गंभीर चोट मिली है। इंसिडेंट के बाद इमरजेंसी सर्विस, पुलिस, एम्बुलेंस और एनिमल कंट्रोल की टीम तुरंत वहां पे पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक रसल स्ट्रीट साउथ पर करीबन कल के दोपहर के आसपास हुआ था और पुलिस ने दो डॉग की सेफ्टी कंट्रोल के लिए भी की ताकि किसी और को नुकसान ना हो। इंजर्ड पर्सन को एम्बुलेंस के थ्रू हॉक्स बे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस बताई जा रही है और इस घटना के बाद पुलिस और लोकल अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है ताकि अटैक कैसे हुआ और डॉग के ओनर की जिम्मेदारी क्या थी ये पता चल सके। वैसे एनिमल कोर्ट कंट्रोल भी डॉग के बिहेवियर और ओनरशिप की जाँच जो है वो कर रहे हैं और अगर किसी ने इंसिडेंट देखा है तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो आप बता सकते हैं पुलिस को, आपके आसपास की पुलिस को, या फिर जस्ट कॉल देम एंड गिव देम सम इंफॉर्मेशन। बट दिस इज क्वाइट सीरियस, यहाँ पे काफ़ी मैंने देखा, मैंने खुद ने भी फेस किया है। सो लकी मैं थोड़ा मतलब तेज था, कह सकता हूँ तेज था, तो उस वजह से मैं बच गया, अदरवाइज मेरा भी ऐसे ही न्यूज़ में आता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑन अ सीरियस नोट, मैं बेसिकली ऑब्वियसली व्हेन आई फिल्म so I fly the drones as well for you know filming various things like real estate के वो सब मैं करता हूँ। Suddenly the dog was there in other house which was open, बाहर से fence कुछ भी नहीं था और उस dog को लगा ये शायद bird है because obviously bird जैसे ही दिखती तो उसे लगा bird है, तो he just jumped over there but he couldn't reach to the drone, तो उसने suddenly मेरे को देखा और वो मेरी तरफ इतनी तेज भाग के आया, मेरी सचमुच फटके चार हो गई थी, ऑनेस्टली बताऊँ मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फट गई थी। और मैं पता नहीं लिटरली जो पहले 3 सेकंड थे वो घर जबकि दूर था, इट वॉजन लाइक यू नो सिर्फ मेरे ख्याल से 50 मीटर दूर होगा, और लिटरली स्टार्टिंग जो 4 से 5 सेकंड थे मैं यही सोचता रहा अब मैं क्या करूँ। बट देन आए मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, मैं जल्दी से मैंने यू नो लकीली क्योंकि अगर मैं मुड़ के जाता तो शायद वो पहुँच भी जाता, बट मैं जल्दी से मैंने बोनट खोला जो ऑब्वियसली दूसरी कार थी तो आई कुड ईजिली फिट इन, तो मैं वो करके और मैं कार में घुस गया। सो उसी वजह से मैं बच पाया, बट ही वॉज कीप जंपिंग आउटसाइड द कार एंड मैं इतना डर गया। और ड्रोन को मैं नीचे भी लेके आ सकता क्योंकि जैसे तैसे मैंने ड्रोन को बहुत हाई पे लेके गया, ऑब्वियसली अंडर द लिमिट्स, बट उसी के कारण डॉग को लगा शायद वो बर्ड नहीं आने वाले और वो वहाँ से गया। बट वो भी एक चीज़ है यार, लाइक वाई यार वाई ये सारी चीज़ें, बट कोई भी नहीं आया वहाँ बाहर उस टाइम और मेरे पास था भी नहीं ऑप्शन, लाइक मैं किससे बात करूँ क्या करूँ, तो आई वाज लाइक नेवर माइंड। बट दिस इज क्वाइट सीरियस कंसर्न टू टॉक अबाउट, व्हाट यू थिंक, लाइक अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो कैसे डील करनी चाहिए इसमें?
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
0: हम
2: दिल से

Well, आज का मेरा सवाल ये है कि अर्जेंटीना कितनी बार फाइनल में प्रवेश कर चुकी है फीफा वर्ल्ड कप के। 5599 से नंबर, अर्जेंटीना कितनी बार फाइनल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए 5599 पे।

0: लंच के मंच पे।
1: क्या हाल, नमस्ते, वेलकम बैक अगेन। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है। आप रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू भी आप मुझे सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी। और आप 104.2 एफएम के जरिए तो सुनते ही हैं, 87.7 के जरिए भी आप सुन सकते हैं। तो यस, आप कहीं मत जाइए, जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। एंड आपको इस आर में भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। लंच टाइम रेंट लाइन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपको बॉलीवुड की खबर भी बताऊंगा, साथ में कुछ वर्ल्ड कप की खबरें भी। जी हाँ, क्या नई लेटेस्ट न्यूज आई है उसके बारे में बात होगी। बट आप बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
0: बचाओ क्या,

0: लंच टाइम रेंट लाइन के लिए सेगमेंट्स भेज दिए आप 5599 पे जो भी इफ यू वांट टू शेयर लाइक कुछ भी ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो यस 5599 पे आप भेज सकते हैं. वैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉल कब करना है बट अभी के लिए आप हाल फिलहाल 5599 पे कुछ रेंट लाइन बातें मुझे शेयर करिए. बट यस आप बने रहिए बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा. बट सबसे पहला जो हाईलाइट है वो ये बता देता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी नाइट होने जा रही है द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो होने वाली है कल यानी कि 18 जुलाई सैटरडे को ऑकलैंड विटनेस करेगा पहली बार कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर को. वेल नॉन स्टॉप लाफ्टर हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंस इंटरैक्टिव ऑडियंस मोमेंट्स भी होंगे और यस मेमोरीज जो होगी वो तो आपके पास होंगे ही मौके जो आप अच्छे से बटोर के लेके जा सकते हैं. परफेक्ट फैमिली शो है परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट है तो चाहे आप बच्चों को ला रहे हो या फिर बड़ों को डजंट रियली मैटर आप आइए और एंजॉय करिए एज फैमिली. वेल यस बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं तो मेक श्योर करें कि आप अभी जाइए bookmyevent.co.nz पे. ट्रिविजन इवेंट्स की तरफ से ये इवेंट हो रहा है सैटरडे 18 जुलाई कल के दिन आपके पास आज ही का दिन बाकी है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है शो.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: Lunchtime Rant Line.
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. And you are listening to Lunchtime के रेंट लाइन के सेगमेंट में. जी हाँ, वैसे एक मैसेज आया मुझे, ये कहते हैं, हे ब्रो, हे केतन, आई एम लिटरली लिसनिंग टू यू सिंस 12 एंड बिकॉज यू सेड अबाउट होम सिकनेस एंड आई वाज डैम मिसिंग माय फैमिली, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम टू द नियर बाय इंडियन स्टोर एंड आई एम लिटरली वॉकिंग थ्रू द आइल्स हियर एंड आई स्वेयर माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग थ्रू द रूफ. भाई क्या हो गया? I picked up just a tiny piece of ginger and two basic tomatoes and looking at the checkout screen, I honestly thought I was paying for 24 karat gold. Back home, we used to dump tomatoes into everything without a second thought. But now, when I'm cooking my curry, I treat my single slice like it's a precious family heirloom. Ooh, between the skyrocketing Auckland's rent and these insane grocery bills at dash supermarket, I'm starting to think my only survival plan left is to just live on tap water and pure vibes. Someone please save my wallet before I look at the onion price. काफी सही लिखा है. Sorry, मेरे को पढ़ के खांसी आ गई. But yes, my intention wasn't to let you guess or let you see the price of this. मुझे पता है price देख के तो यार किसी को भी tension हो जाएगी भाई क्या हो गया. But my main intention was कि आप grocery store में जाएं और जो आपकी favorite चीज़ें वो खरीदें. अब आपका मैसेज पढ़ के लग रहा है कि आप खुद नहीं खरीदें, आप किसी अपने दोस्त को ले जाओ, दोस्त को बोला भाई तू मेरा खर्चा कर ले. I think that would be good idea. But thank you bro, thank you so much for sending the amazing message यार. मतलब मजा आया, पढ़ के मजा तो आया बट फील भी हुआ थोड़ा आपके लिए.
2: Lunchbox with Ketan.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. A mass food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: FIFA ke update leke aaya hoon. FIFA ne fans ke liye ek special page launch kiya hai. Of course, World Cup final hone wala hai. Bahut hi kam time bacha hai. Sirf aur sirf 2 din hi bache hue hain. बट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो क्या काफ़ी यू नो अच्छी बातें हैं जो मैं लेके आया हूँ कलेक्ट करके. और 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी. और इस पेज पर फैंस फाइनल मैच के लाइव फॉलो भी कर सकते हैं, मैच के लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं और ऑफिशियल टिकट्स इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं. फाइनल जो है वो 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा. और इस स्टेडियम में दुनिया भर के फुटबॉल फैंस इकट्ठा होने वाले हैं. वर्ल्ड कप चैंपियन के फैसले होगा, आई मीन वर्ल्ड कप चैंपियन का फैसला भी होगा उस दिन जब टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा. और इसी पेज पर बताया जाएगा कि कौन सी दो टीम्स जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है. ऑब्वियसली अभी तो आप सभी को पता है, तो दैट इज नथिंग न्यू फॉर अस. बट यस, मैच के दिन फैंस लाइव स्कोर्स, कमेंट्री, हाइलाइट्स और मैच स्टेटिस्टिक्स भी देख सकेंगे. अगर कोई फैन स्टेडियम में जाकर मैच देखना चाहते हैं तो इसी पेज से ऑफिशियल फीफा टिकटिंग इन्फॉर्मेशन और टिकट एप्लीकेशंस भी प्रोसेस की डिटेल मिल जाएगी. फीफा फैंस को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट खरीदने की सलाह देते हैं ताकि फ्रॉड से आप बच सकें. वेल आई एम नॉट श्योर इफ द टिकट्स आर स्टिल अवेलेबल और नॉट, बिकॉज नाउ एवरीवन नोज कि फाइनल टीम मतलब फाइनल में कौन है दो टीमें. सो बट इफ यू वॉन्ट टू गो एंड वॉच द मैच, I'm pretty sure यहाँ पे काफी फैंस हैं फुटबॉल के, तो आप ट्राई कर सकते हो. आई ट्राई, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. लंच के मंच

0: अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि ऑकलैंड एयरपोर्ट पर बहुत ही गहरे फॉग यानी कि कोहरा की वजह से कई डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हुई और डिले भी हुई। सुबह विजिबिलिटी बहुत ही कम होने के कारण एयरक्राफ्ट को सेफली टेक ऑफ और लैंड करने में काफी दिक्कत हो रही थी और जिस वजह से एयरपोर्ट पर टेम्पररी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इसका सबसे ज्यादा असर जो है डोमेस्टिक रूट्स पर पड़ा। कई पैसेंजर्स को लंबे डिलेस का सामना करना पड़ा जबकि कुछ फ्लाइट्स पूरी तरह कैंसिल कर दी गई। एयरपोर्ट और एयरलाइंस ने पैसेंजर को अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर चेक करने की सलाह दी है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बताया कि जैसे ही वेदर इंप्रूव होगा और फॉग हटना शुरू होगा रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हटा दी जाएगी, फ्लाइट्स ऑपरेशन नॉर्मल हो जाएंगे। फिर भी पहले से हुई डिलेज की वजह से कुछ फ्लाइट्स के स्केड्यूल पूरे दिन काफी इफेक्ट हुए हैं और ये इंसिडेंट काफी दिखाता है कि खराब वेदर स्पेशली डेंस फॉग एविएशन पर कितने बड़े इंपैक्ट डाल सकता है और ऐसे सिचुएशन में सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, इसीलिए फ्लाइट्स को डिले या कैंसिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जबकि ताकि पैसेंजर क्रू की सुरक्षा बनी रहे कंपेयर टू यू नो जस्ट लेट इट गो।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
7: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
10: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
11: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.

0: With Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: बॉलीवुड से खबर लाया हूँ. बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायणा, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके ऑफिशियल ट्रेलर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने यू यानी कि यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दे दिया है. इसका मतलब है कि ट्रेलर हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए सूटेबल माना गया है. सबसे खास बात यह है कि ट्रेलर की लेंथ जो है वो 4 मिनट 15 सेकंड है, जो आम बॉलीवुड ट्रेलर के कंपेयर में काफी लंबा यानी कि एक म्यूजिक वीडियो से भी बड़ा. CBFC की वेबसाइट पर ट्रेलर के 2 वर्जन लिस्टेड है, एक 4 मिनट 15 सेकंड का और दूसरा 4 मिनट का. अब फैंस ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन सा वर्जन रिलीज होने वाला है. फिल्म में रणवीर कपूर भगवान श्री राम के रोल में नजर आएंगे, साई पल्लवी श्री सीता माता के रोल में और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. ट्रेलर का वर्ल्ड वाइड लॉन्च 24 जुलाई 2026 को प्लान्ड है और इसे कॉमिक कॉन इवेंट के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी है. वैसे ओवरऑल ट्रेलर को मिल चुका है यू सर्टिफिकेट और उसकी अनयूजुअल 4 मिनट रन टाइम ये दिखाती है कि मेकर्स ऑडियंस की फिल्म को कितना ग्रैंड स्केल VFX और एपिक स्टोरी टेलिंग की

अभी मैंने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले नहीं एक्चुअली एक घंटे पहले पूछा था आपसे लास्ट आर के एंड में कि अर्जेंटीना कितनी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, और इंटरेस्टिंगली सभी ने सही जवाब दिया है। मुझे ग्यारह मैसेज मिले, मैं नीचे वाला मिस हो गया था, 11 मैसेज मिले और सभी ने सही जवाब दिया। वेल, पहला जो था वो 1930 में हुआ था, ये 1930 वाला वर्ल्ड कप जब पहली बार अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाई, तो वो रनर अप रही थी अगेंस्ट उराग। फिर 1978 यानी कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद फिर से आई थी, और इस बार नीदरलैंड को हराकर अर्जेंटीना ने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीता था। वाओ, क्या बात है, वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 1986 जहां पे वेस्ट जर्मनी के अगेंस्ट उन्होंने फाइनल खेला था, और फॉर्चुनेटली दूसरी बार चैंपियन बनी थी अर्जेंटीना 1986 में। फिर उसके बाद 1990 में फिर से उनके पास मौका था जीतने का, बट यस अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाई, वेस्ट जर्मनी के अगेंस्ट ही था, यानी कि पहला वर्ल्ड कप वेस्ट जर्मनी हारी थी और ये वर्ल्ड कप वो लेके चली गई। फिर 2014 में फिर से अर्जेंटीना फाइनल पहुंची, इस बार जर्मनी थी और रनर अप रही, यानी कि इस बार भी वो जीत नहीं पाई। फिर उसके बाद 2022 यानी कि ठीक 4 साल पहले फ्रांस के अगेंस्ट मैच हुआ और वो अर्जेंटीना, ऑफ कोर्स आप सभी को याद होगा अर्जेंटीना जीत चुकी थी वो वर्ल्ड कप, और अभी फिर से स्पेन के अगेंस्ट फाइनल में आपको दिख रही है 2026 में, यानी कि टोटल 7 बार वो पहुंच चुकी है। लेट्स सी यार क्या रिजल्ट आता है, क्या लगता है आपको, क्या इस बार फिर से कप उठाने का मौका मिलेगा अर्जेंटीना, क्या अर्जेंटीना चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी या नहीं, बताइए आप 9599 पे।

0: आवाज गूंजेगी।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और यस तीन बजे तक मेरा शो है, उसके बाद सैंडी जुड़ जाएंगी। तो यस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग टाइम यू आर गिविंग टू मी। आप समय निकाल के मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो बने रहिए, बिकॉज बहुत सारे कॉन्टेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सार में तो आपको कुछ मौके भी देने वाला हूँ जहाँ पे आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। But yes, connected rahiye. Sandy will be bringing the coffee break from 3 onwards and then drive show as well. Kyunki abhi haal filhaal Ruz pe morning show kar rahe hain. Vijay Pooja holiday pe hai. Bachao kya?

0: द ग्रेट कॉमेडी नाइट होने जा रही है कल, यानी कि 18 जुलाई को सैटरडे, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। ट्रिविजन इवेंट्स आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बढ़िया मेगा इवेंट, जहां पे पहली बार आप विटनेस करेंगे इंडिया के टॉप शो, वन ऑफ द टॉप शो कॉमेडी नाइट, जहां पे कपिल शर्मा परफॉर्मेंस देते हैं। वहां पे इन्होंने या तो कभी जैकी श्रॉफ बनके, या फिर इन्होंने क्या नाम है, धर्मेंद्र जी के रोल को निभाया है, तो कभी शाहरुख खान, तो कभी कोई और, कभी डोनाल्ड ट्रंप बनके भी इन्होंने काफी हंसाया। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा अभिषेक। साथ में आ रहे हैं राजीव ठाकुर, ऑफकोर्स ही इज अ चाइल्ड बडी ऑफ कपिल शर्मा, उनके साथ काफी सालों से है। इनफैक्ट उनके शो में भी काफी अच्छे अच्छे रोल किए हैं, काफी अच्छे एक्टर भी। इनकी लेटेस्ट फिल्म आई थी जो इंडिया की, जो प्लेन हाईजेक हुई थी 1999 में आई गेस, एयर इंडिया, तो उसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने रोल किया, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। तो ये भी आ रहे हैं, यानी कि दोनों आपको हंसाएंगे बहुत ही ज़्यादा, डबल धमाल होने वाला है, डबल मज़ा आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आप फैमिली को लेके आ सकते हैं वहाँ पे, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, आपसे सभी के साथ आप एज अ फैमिली आ सकते हैं, एज अ फ्रेंड आ सकते हैं। डजंट रियली मैटर कि इसमें कोई एज लिमिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम टिकट बचे हुए हैं, जल्दी से जाइए, आज ही का दिन आपके पास, बिकॉज कल शो है, तो यू Never know, the tickets might gonna go sold out tonight only. So yes, Afterpay भी available है वहाँ पे option, और Saturday 18 जुलाई यानी कल के दिन Victory Convention Center में होने वाला है। bookmyevent.co.nz www.bookmyevent.co.nz पे जाइए और टिकट बुक कर लीजिए।
1: Lunchbox with Ketan,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम keep calm because Punjabi swag is on.
3: मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते अख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए।

0: या रिप्ले।
1: वेल, अगर आपको कंट्री लाइफ पसंद है तो ये जो आर्टिकल मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। RNZ के कंट्री लाइफ प्रोग्राम को RNZ के कंट्री लाइफ प्रोग्राम ने लेक टेकापू के एक यूनिक फार्म की कहानी दिखाई है जहां ट्रेडिशनल फार्मिंग को टूरिज्म के साथ जोड़ दिया गया। यहां के फार्म ओनर्स ने फार्मिंग के साथ एग्री टूरिज्म शुरू किया जिससे उनकी इनकम बढ़ती और टूरिज्म को भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलता। वैसे लेक टेकापू दुनिया भर में काफी डार्क स्काइज और मिल्की वे के क्लियर व्यूज के लिए काफी फेमस है और इसी वजह से फार्म पर रात के समय स्टार गेजिंग टूर्स कराए जाते हैं। गाइड सैम ब्लेयर विजिटर्स को टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स, प्लैनेट्स और माता रेकी के बारे में बताते हैं और ये टूर्स इंग्लिश के साथ जापानीज और मैंडरिन में भी अवेलेबल है क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आते हैं। वैसे फार्म पर सिर्फ स्टार गेजिंग नहीं बल्कि हॉर्स ट्रैकिंग, ATV राइड्स, शीप एंड कैटल फार्मिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है और पेटिंग जू भी अवेलेबल है वहाँ पे। सो इस तरह विजिटर्स न्यूजीलैंड के रूरल लाइफ को और भी करीब से देखते हैं, महसूस करते हैं। फार्म पर लगभग 10,000 से ज्यादा मरीनो शीप्स और 600 से ज्यादा कैटल भी पाले जाते हैं और स्टोरी का जो मेन मैसेज ये है कि आज के समय में फार्मर सिर्फ खेती या पशुपालन पर डिपेंड नहीं रहते हैं, टूरिज्म और नए आइडियाज के थ्रू वो अपनी इनकम भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही न्यूजीलैंड की नेचुरल ब्यूटी और फार्मिंग कल्चर को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Well, ये गाना अगर आपको पूरा सुनना है तो बने रहिए, बिकॉज अगला गाना वही है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, वो आ रहे हैं एक लेजेंडरी शो लेके यहाँ पे आप सभी के बीच, प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं। dryticket.com पर जाकर टिकट खरीद लीजिए। 25 जुलाई यानी कि नेक्स्ट वीकेंड होने वाला है ये शो द ट्रस्ट एरिना में। जी हाँ, चाहे आपके फेवरेट्स कवाली हो या फिर फेवरेट सूफी अंदाज हो या फिर फेवरेट बॉलीवुड का कोई नंबर हो या फिर फेवरेट इंटरनेशनल भी हो, ये सारे गाने आपके वन ऑफ द फेवरेट गोना बी सिंगिंग लाइव बाय वन एंड ओनली राहत फतेह अली खान। वैसे यस, उनके साथ उनके बेटे भी आ रहे हैं, सो यस इट गोना बी अमेजिंग जुगलबंदी, बहुत ही मजा आने वाला है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं फिर से जाने वाला हूँ, this is going to be my second time, so I can't wait for this moment. Jaldi se jaiye drytickets.com par. Maine to le li hai ticket, aap bhi le lijiye.

0: इस साल का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन गरबा आ चुका है। एक नए सिंगर, एक नए परफॉर्मर, एक नए आर्टिस्ट, एक नए यू नो सेलिब्रिटी के साथ राज गढ़वी आ रहे हैं ऑकलैंड में परफॉर्म करने 1 अगस्त को द महात्मा गांधी सेंटर में। जल्दी से जाइए, टिकट खरीद लीजिए, eventstickets.co.nz, दोनों SS के साथ फिनिश हो रहे हैं, eventstickets.co.nz। टिकट लेते वक्त अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ और सवाल करने हैं आपको तो स्वप्निल शाह को कॉल करिए 0224394736 पे। जी हाँ, बट यस, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग इवेंट, तो आप जल्दी से जाइए। और लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता एंड प्रांशिक ग्रुप की तरफ से प्रस्तुत किया ये गरबा नाइट विद राज गढ़वी जो होने वाला है 1 अगस्त को द महात्मा गांधी सेंटर में।
1: लंच बॉक्स विद केतन, इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimize landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
5: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
6: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
7: Join the Tribe!
6: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
7: join the Tribe!
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI। Bye.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: आईटी के सेक्टर में उबर दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक है. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उबर जर्मन फूड डिलीवरी कंपनी डिलीवरी हीरो को लगभग 12.5 बिलियन पाउंड यानी कि 14.3 बिलियन डॉलर में खरीदने की के बहुत करीब है. और ये डील ग्लोबल फूड डिलीवरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ी डील में से एक हो सकती है. वैसे डिलीवरी हीरो ने भी कंफर्म किया है कि उबर के साथ एडवांस नेगोशिएशन चल रही है. अगर डील फाइनल होती है तो उबर को यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया और लैटिन अमेरिका में डिलीवरी हीरो का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिल जाएगा और इससे उबर ईट्स की ग्लोबल मार्केट पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी. वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक उबर पहले भी डिलीवरी हीरो को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन इनिशियल ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ था. अब नया प्रपोजल ज्यादा वैल्यू का है जिस वजह से डील के सक्सेसफुल होने की संभावना काफी बढ़ चुकी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक्विजिशन से फूड डिलीवरी मार्केट में कंपटीशन और कंसीडरेशन कंसोलिडेशन दोनों बढ़ने वाले हैं. क्या लगता है आपको?

एंड दैट्स ऑल। बहुत ही बढ़िया आज का दिन यार, बड़ा ही मजा आया आपसे बात करके, और कुछ जो मैसेजेस आए काफी इंटरेस्टिंग लगे मुझे आज। गाने तो एक से बढ़कर एक चलाते हैं हम यहाँ पे बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने, और यस मेक श्योर आप AI से भी रूबरू हो, उससे भी सीखे। वीकेंड आ रहा है अभी फिर से कल परसों, अच्छे से एंजॉय करिए, बाहर जाइए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जो शोज हैं हमारे शहर में उसे भी अटेंड करिए, टिकट ले लीजिए, जस्ट चेक आउट द वेबसाइट अगर वो अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो फट से ले लीजिए, बिकॉज एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक्सपीरियंस आपको फिर से मिले ना मिले वी कांट से राइट, बट यस अगेन बहुत ही बड़ा बहुत ही

0: वेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: ग्रैब अ बार्गेन एट माइटी 10 मेगा Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints. Sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
6: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Poke Koke, celebrating 36 years of great sleep.
7: आपके सामने एक रेड बटन है,
8: दबा दिया।
7: नहीं दबाना था।
9: The madness is back, धमाल 4।
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
9: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
9: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
12: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
13: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
3: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at 3. Kiwi Rail will operate the new Cook Strait ferries when they arrive. In details announced today by Winston Peters, the state-owned company will pay fees to local ports. The Rail Minister says the arrangement is to everyone's benefit.
15: You're looking at the people who put taxpayers first. A deal respectfully with council-owned ports and to keep the conversation focused on the only question that matters. Does New Zealand need this?
14: The ferries will be named Coupe and Cook. The US president is pointing to vulnerabilities in the electronic voting system. Newly declassified documents claim the former leader of Venezuela, Nicolas Maduro, developed a way to exploit it in his favor. Donald Trump says it needs to be addressed immediately.
16: This intelligence underscores why we must take urgent action to ensure that our own system can never, ever be hacked.
14: Police in Dunedin have seized a large amount of drugs and cash after spotting a suspicious vehicle. With hundreds of students partying ahead of a return to class, the driver was observed at around 10:30 p.m. last night. A search turned up cocaine, ketamine and MDMA. Parts of glamorous West Hollywood have been left flooded by a burst water pipe. The rupture has also caused a large sinkhole on Los Angeles' iconic Sunset Boulevard. Back-to-back Player of the Match awards for Black Caps left-arm spinner Jaden Lennox. He took 4 for 52 as the West Indies folded for 140. The Black Caps won by 6 wickets, taking a 2-1 ODI series lead. And to motorsport with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty. Food for thought for Kiwi F1 driver Liam Lawson. Racing Bulls has given its sole car upgrade to Lawson's teammate this weekend.
3: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.5 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 11 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन है। ओवर द वीकेंड इट्स गोना बी सनी एंड ब्राइट वेदर। सनसेट आज का 5:26 पर।
3: The beat of Bollywood.
0: World's best हमारी good branch भी है.
3: Coffee break with Sandy.
17: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हैव मी अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है कॉफी ब्रेक में. और 4 के बाद यहाँ पे ड्राइव शो में साथ कंटिन्यू रहने वाला है. सो कैसे हैं आप? आपका डे कैसा गया है? अगर आपका बर्थडे है, इट इज 17th टूडे, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड अगर आज की एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. अगर आप भी किसी को विश करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे 5599 इज़ द नंबर. सो फ्राइडे भी आ चुके हैं हम गाइस. आपका ये जो पूरा का पूरा हफ्ता है कैसा गया है? हाउ वॉज दिस वीक? ये पूरा हफ्ता बिजी था, ओके था. विंटर तो काफ़ी अच्छी जा ही रही है फिलहाल. तो वीकेंड भी अच्छा खासा वेदर दिखाई दे रहा है. गुड सनी ब्राइट डे जो है ये दिखाई दे रहे हैं. सो ओवर द वीकेंड अगर कोई ट्रेल या हाइकिंग आपको करनी है, कहीं पे आपको निकलना है बाहर, बिकॉज एक तो होता है कि भाई मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, मुझे वॉकिंग शुरू करनी है. एंड दूसरा ये होता है कि एक्सरसाइज वॉकिंग आप सीनिक व्यू के साथ भी कर सकते हैं. तो इसीलिए ये ट्रेल्स और हाइक्स के जो आइडियाज़ हैं वो मैं आपको देती हूँ. सो थोड़ी देर में आपके लिए वो भी रहेगा.

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply. Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
2: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
3: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
6: Being fussy is just knowing what you want. So, be more fussy. Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches. Because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love. Delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough. Serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits. Trail check.
9: 3:14 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं. Trail check में बात करते हैं आज Cozy Messy Loop track के बारे में. This is one of the best half day bush hikes जो कि within an hour of Auckland में है actually में. सो इसमें न्यूजीलैंड का ना जेन्युइन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है. न्यूजीलैंड में जो चीज़ें फेमस है, जो ट्रीज़ फेमस है, कौरी ट्रीज़, नेटिव बर्ड्स, वाटरफॉल्स एंड और भी ढेर सारे सीनिक व्यूज़, एवरीथिंग एक्चुअली में यहाँ पे है. लोकेशन इसकी हुनुआ रेंजेस में है, हुनुआ रेंजेस रीजनल पार्क में. सो बेसिकली यू कैन स्टार्ट एट हुनुआ फॉल्स कार पार्क. सो अगर सिटी से इस जगह पे जाना हो तो आपको तकरीबन 1 आवर लगने वाला है. 55 to 65 मिनट्स इज़ अ ट्रेवल टाइम. डिस्टेंस इस हाइक का है अबाउट 8.3 किलोमीटर. 3 to 4 आवर्स लगते हैं. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर आप वहाँ पे तकरीबन 10 बजे पहुँचो, यू नो, एंड 9 बजे भी आप पहुँच सकते हो. वैसे तो अगर अर्ली आप करते हो हाइक तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लेट से लेट अगर आप 9 या 10 वहाँ पे पहुँचते हो, देन यू हैव अ गुड सनी डे टू कवर दिस हाइक. एलिवेशन भी है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट है, यानी कि थोड़ा सा टफ है. एंड थिंग इज़ कि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है. वहाँ पे टॉयलेट्स, पिकनिक एरिया भी है, ड्रिंकिंग फाउंटेन, फ्री पार्किंग ऑफकोर्स वहाँ पर है. सो काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर है. जो ट्रेल है वो बहुत अच्छे से मार्क की गई है, एंड मोस्टली इसमें ग्रेवल पाथ, फॉरेस्ट ट्रैक्स है, वुडन स्टेप्स भी है, ट्री रूट्स एंड फ्यू मडी सेक्शंस भी है आफ्टर द रेन, बट नाउ इज द वेदर इज स्टिल गुड, तो ऐसा कुछ है नहीं है. काफ़ी जो रेगुलर हाइकर्स है ये रेकमेंड करते हैं वॉकिंग एंटी क्लॉक वाइज. वहाँ पर उनका कहना है कि ये बेस्ट डायरेक्शन है, बिकॉज यू क्लाइंब द स्टेयर्स वाइल यू आर फ्रेश. बाद में क्लाइंब करना स्टेयर्स, जब बीच में थोड़ा स्टेयर्स को क्लाइंब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड फिनिश विद अ जेंटल, थोड़ा डिसेंट वेसेज देन आप फिनिश करते हो, एंड यू कैन एन्जॉय द डैम व्यूज टूवर्ड्स द एंड. अगर आप ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इस ट्रेल को करते हैं, सो अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर तो मेक श्योर कि यू हैव गुड शूज़ जो आप पहन के जा रहे हैं. एटलीस्ट पानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, 1.5 लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए. स्नैक्स आप साथ में कैरी कर सकते हैं, एंड रेन जैकेट वेदर के हिसाब से. डॉग्स यहाँ पे परमिटेड नहीं है, एंड वहाँ पे जो रिज़र्व है वहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है. एनीवे आजकल सर्दी में कौन स्विमिंग करेगा वहाँ पे, बट स्टिल वहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। एंड आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि कौन सी ऐसी हाइक है, कौन सी ट्रेल है जहाँ पे जाना चाहिए, इट्स वेरी गुड वे, एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा वे हो जाता है, फैमिली बॉन्डिंग या फ्रेंड्स के बीच में बॉन्डिंग, इवन टीम बॉन्डिंग के लिए भी आप अगर हाइक्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा वे होता है आपस में बॉन्ड करने के लिए। सो आपके पास कोई आइडिया है कौन सी हाइक करनी चाहिए तो आप भी लिख के भेज सकते हैं। दिस हाइक जिसके बारे में बात कर रही थी, इसका नाम है कॉजी मैसी लूप ट्रैक।
7: Hollywood's most wanted.
8: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आऊं।
10: मैं लाऊं अपना A game.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

325 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. न्यूज आ रही है कि US कंसिडर कर रहा है टू इंक्रीज टैरिफ्स ऑन न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स, जिससे कंसर्न हो सकता है कीवी एक्सपोर्टर्स को जो कि हैविली रिलाई कर रहे हैं ऑन दी अमेरिकन मार्केट. सो टैरिफ्स क्या है? टैरिफ एक टैक्स होता है जो कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर प्लेस होता है. सो अगर US ऐड करता है टैरिफ ऑन न्यूजीलैंड प्रोडक्ट्स तो US कंपनी इम्पोर्टिंग न्यूजीलैंड गुड्स विल पे मोर. सो दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट मे बी पास्ड ऑन टू अमेरिकन कंज्यूमर्स. सो न्यूजीलैंड एक्सपोर्टर्स मे हैव टू रिड्यूस प्राइसेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, जिससे उनका जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होगा. नाउ US ऐसा क्यों कर रहा है? US की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका ये कहना है कि वो रिव्यू कर रहे हैं ट्रेड रिलेशनशिप एंड अप्लाई कर रहे हैं एडिशनल टैरिफ्स टू कंट्रीज बेस्ड ऑन फैक्टर जैसे कि ट्रेड बैलेंसेस हो गए या फिर बाकी ट्रेड पॉलिसी कंसर्न्स हो गए. न्यूजीलैंड ने आर्ग्यू किया है कि उन्होंने मेंटेन किया है हमेशा एक ओपन ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद द US, एंड जो हायर टैरिफ्स है ये दोनों साइड्स में अफेक्ट हो सकते हैं, दोनों साइड्स को एक्चुअली में ये अफेक्ट कर सकते हैं. सो न्यूजीलैंड की कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अफेक्ट हो सकती है? जो बिगेस्ट कंसर्न्स है एक्सपोर्टर्स के लिए, सच एज कीवी फ्रूट सबसे बड़ी. सो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटी टू US, हायर प्राइसेस कुड रिड्यूस द डिमांड एज वेल. देन देयर इज अ मीट जैसे कि बीफ एंड लैम. US जो है इज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर न्यूजीलैंड मीट एक्सपोर्टर्स. डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें आते हैं जैसे कि मिल्क पाउडर, बटर, चीज़, एंड दे कैन फेस हायर कॉस्ट. देन फॉरेस्ट्री आ गए जैसे कि टिम्बर एक्सपोर्ट्स, दे आर ऑल्सो वॉचिंग टैरिफ डेवलपमेंट्स वेरी क्लोजली. एंड वॉट कुड हैपन इन न्यूजीलैंड इज कि फॉर बिजनेसेस एक्सपोर्टर्स में अर्न लेस, सम कंपनीज मे बी वो ऑल्टरनेटिव मार्केट देखेंगे एशिया या फिर यूरोप में, एंड स्मॉलर जो एक्सपोर्टर्स रहेंगे उनके ऊपर जो प्रेशर है ये फील हो सकता है. एंड कंज्यूमर्स के लिए जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन एवरीडे कीवी प्राइसेस मे बी लिमिटेड इनिशियली, बट अगर बिजनेस जो है ये हायर कॉस्ट फेस करते हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट जो है ये सप्लाई चेन के थ्रू फ्लो हो सकता है कंज्यूमर को. इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो US इज़ वन ऑफ न्यूजीलैंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. सो एनी ट्रेड बैरियर जो है उसमें कुछ अनसर्टेनिटी जो है ये क्रिएट डेफिनेटली होगी. सो लेट्स सी कि क्या होता है इसको लेके आगे जाके जो है ये क्या होता है. एनीवे यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन, कुछ आने वाले जो इवेंट्स हैं इसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी देर में. स्टे ट्यून्ड.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: Due Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
7: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
9: Lots.
8: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
9: Probably.
8: Am I paying for this free coffee?
9: Definitely.
8: Will they talk me into an upgrade?
9: Oh.
8: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
10: True Midas.
11: New winter go warm up heater with hot deals at Lifestyle Furniture. Sofas, recliners, dining or living room furniture par paye massive savings. Visit kijiye unke 3 Auckland stores, Manukau, Westgate ya Mount Wellington. Lifestyle Furniture, stay in style.
12: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
13: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
14: Zabardast hits. Shuru ho jaye to rukte nahi. Playing Bollywood's biggest hits.
15: 336 at the moment ये 337 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं यो हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. अगर रोवा के जरिए आप सुन रहे हैं, मेक श्योर कि हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट एंड म्यूजिक स्टेशंस भी आप सुन पा रहे हैं. वैसे हमने वहाँ पे ट्रेंड मेकर्स भी रोवा पे रखा है. ट्रेंड मेकर्स जो कि 6 से 7 के बीच में आप यहाँ पे सुनते हैं, डिफरेंट थीम्स आप यहाँ पे सुनते हैं. अब ट्रेंड मेकर्स अगर आप मिस आउट करते हैं तो रोवा पे जाके भी सुन सकते हैं, जहाँ पे हमारी बातों के साथ गाने आपको मिलेंगे डिफरेंट थीम्स के, विदाउट एनी एडवर्ट वहाँ पे एक्चुअली में आपको मिलने वाले हैं. वैसे याद आया वैसे इसी बात से कि आपको बता दूं कि आप कल अगर नॉर्थ शोर की ओर जाने वाले हैं तो आप वेराऊ रोड पे पहुंच सकते हैं, जहाँ पे नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट है. नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट में कल कशिका रहने वाली है. कशिश फूड वहाँ पे फूड टेस्टिंग कर रहे हैं वेरियस प्रोडक्ट्स की. सो आप भी एक्चुअली में ज्वाइन इन कर सकते हैं बिटवीन 10 to 12, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक. एक्चुअली में वहाँ पे फूड टेस्टिंग रहने वाली है वेरियस प्रोडक्ट्स की, एंड कुछ जीतने का मौका भी आपको वहाँ पे मिल सकता है. यू नेवर नो, बिकॉज कशिका विल बी देयर. सो नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट में आपको पहुँचना है, जो कि 110 वेराऊ रोड वेराऊ वैली में लोकेटेड है. वैसे अगर आप सर्च करते हैं नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट तो एड्रेस आपको ज़रूर मिल जाएगा.

0: 342 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ. एंड रिसेंटली हमने जो अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है इसको सुनना ना भूलेगा. ज़रूर इस पॉडकास्ट को भी आप सुनिएगा. इसमें हमने शनील लाल के साथ बात की है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन शनील लाल के बारे में देती हूँ कि ये कौन है. शनील लाल जो है एक प्रोमिनेंट न्यूजीलैंड जर्नलिस्ट हैं, पोलिटिकल कमेंटेटर भी है, LGBTQ कम्युनिटी के एक्टिविस्ट भी हैं. और इन्होंने ही इज़ बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग द कन्वर्जन थेरेपी एक्शन ग्रुप, जहाँ पे उन्होंने एक 5-year मूवमेंट चलाई थी दैट बैंड कन्वर्जन थेरेपी इन 2022 इन न्यूजीलैंड. कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर जाके सुनिएगा. वेल, शनील लाल जो कि अपने आप को वैसे अगर इनकी आइडेंटिटी के बारे में जब हमने पूछा तो वो अपने लिए प्रोनाउंस दे एंड देम यूज़ करते हैं. अपने आप को उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज अ ट्रांसजेंडर एंड नॉन बाइनरी जिसे हम कह सकते हैं, हिजड़ा जिसे हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में. एंड इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की है. 2023 में ये यंग न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर बने थे यहाँ पे. इनफैक्ट ही बीन अ वेटरन ट्रस्टी एंड बोर्ड मेंबर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ऑकलैंड प्राइड, रेनबो यूथ, अधिकार ओथ्रेया, ये बहुत सारी और चीज़ें हैं एक्चुअली में. इनफैक्ट इन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई है जहाँ पे जो हेट स्पीच लॉज है उसके ऊपर इन्होंने काम किया है. एंड नॉट जस्ट फॉर द LGBTQ कम्युनिटी बट फॉर ऑल द कम्युनिटीज एज वेल. इनफैक्ट ये हर चीज़ के लिए इन्होंने स्टैंड लिया है यहाँ पे. रिसेंटली बहुत कुछ हुआ था जब यू नो ब्रेन तिमाकी का जो इंसिडेंट हुआ था उस समय भी उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था इन सब चीज़ों के बारे में, इनइक्वालिटीज़ के बारे में, हेट स्पीच के बारे में. बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए थे. ये जो पॉडकास्ट इन्होंने हमारे साथ रिकॉर्ड किया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने LGBTQ कम्युनिटी के जो के बारे में जो हमने हमारे अंदर जो सवाल थे हमने वो पूछे हैं. एंड इन्होंने बहुत ही अच्छे वे से एक्चुअली में इन सवालों के जो जवाब है ये भी दिए हैं. हमने रिसेंटली जैसे सुना था कि यू नो सम पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ थिंग या फिर किसी न किसी चीज़ को लेके, इसके ऊपर भी इन्होंने वैसे खुल के यहाँ पे बताया था. थोड़ा सा बिट वो सुनते हैं.
1: You make a group look so ridiculous that they, you know, that no one will ever take them seriously. I truthfully have never in my entire life, being so immersed in the community, come across as anyone who thinks that they are a table or a helicopter. I often go down to the, like, who starts these rhetorics, and I online, you go online and, you know, it's either Brian Tamaki or it's Family First or it's one of the anti-trans groups. You know, when you say something like that someone identifies as a table, it's so ridiculous that no one's ever going to take that group of people ever seriously. And I think that there are such bigger issues for us to be talking about than to be talking about, like, someone's...
0: Identifying as a table.
1: I think it's completely fabricated. There was this story that went viral a very long time ago from the USA where they basically were like, oh, teachers are keeping litter boxes in classes because some students are identifying as cats.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge. Ow!
3: 4:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? आपका हफ्ता कैसा गया है? एक वर्ड में, एक ही अक्षर में अगर आपको पूरा का पूरा हफ्ता एक्सप्लेन करना हो कि आपका पूरा वीक ना ऐसा गया है, तो वो पूरा का पूरा वीक क्या रहेगा? हिंदी में अगर आपको बोलना हो या अपनी कोई भाषा में आपको बोलना हो कि कैसा गया आपका पूरा का पूरा हफ्ता, तो लिख के भेजिए 5599 पर. मेरे को लगता है मेरे लिए जो वर्ड रहेगा ना वो है भागम भाग. मतलब दो वर्ड्स हैं बट चलो एक साथ यूज़ होते हैं. भागम भाग विल बी माय वर्ड फॉर दिस वीक. आपके लिए ये हफ्ते के लिए अगर एक वर्ड सेलेक्ट करना हो तो वो कौन सा वर्ड होगा? पार्थ का कहना है जकास. अरे क्या बात है. हमारे साथ भी शेयर कीजिए पार्थ, ऐसा क्या हुआ कि जकास हफ्ता गया आपका? वैसे जकास भी यहाँ पे आता है वीकेंड पे. प्रांशे का कहना है कि इनका फाड़ू गया. क्या बात है, वेरी नाइस यार, आई एम सो ग्लैड. ओ प्रशांत का कहना है, सॉरी आपके नाम का टाइपो था. सो अच्छा लग रहा है लोगों के मैसेजेस, जकास फाड़ू ये सब पढ़ के. बट नो पीयर प्रेशर आपके ऊपर. अगर आपका हफ्ता सही नहीं गया है उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वीकेंड बाद में आपका अच्छा जाना चाहिए. सो आप भी शेयर कीजिए कि आपका पूरा का पूरा हफ्ता कैसा गया है. एक वर्ड अगर उस पूरे के पूरे हफ्ते को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ऐसा वर्ड बताइएगा जो मैं ऑन एयर बोल सकूँ. एंड वेल, इससे याद आया, द ग्रेट कॉमेडी नाइट होने वाली है इसी सैटरडे को, यानी कि कल होने वाली है. कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. नॉन स्टॉप लाफ्टर तो रहने ही वाला है. परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट एक्चुअली में रहेगा. अगर आप लास्ट मोमेंट की टिकट्स चेक करना चाहते हैं, यू कैन ट्राई योर लक. बुक माई इवेंट डॉट करोड़ NZ पर जाएगा, वहाँ पर जाके अपने टिकट्स की जो डिटेल्स है ये आप चेक कर सकते हैं. आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है.

4:13 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक वर्ड में अगर आपको बताना हो कि पूरा का पूरा हफ्ता आपका कैसा गया है, एक ने मैसेज बोला है इंटरेस्टिंग। ओके, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हुआ था? सोनम ने मैसेज किया है, वन वर्ड इज मैरिड। वाओ, कांग्रेचुलेशंस सोनम, एंड या आपको और आपके परिवार को बधाई हो इसके लिए। वेल, आप भी बता सकते हैं यहाँ पे वन वर्ड में आपका हफ्ता कैसा गया। इसे एक गरबा नाइट होने वाली है जो आपकी बहुत अच्छी जा सकती है, राज गढ़वी के साथ। लोटस प्रोडक्शन, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप आपके लिए गरबा नाइट लेके आ रहे हैं। राज गढ़वी जो स्टेज पे रहेंगे, अनफॉरगेटेबल नाइट रहेगी। सो मार्क योर कैलेंडर गाइस, 1 अगस्त को ये परफॉर्म करने वाले हैं महात्मा गांधी सेंटर में। महात्मा गांधी सेंटर एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे गरबा डांडिया खेलने का अलग ही मज़ा आता है। सो टाइम पर वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। टिकट्स अपनी जल्दी से खरीद लीजिए eventstickets.co.nz पे जाके। तो दोनों में ऐसा है, इवेंट्स में भी और टिकट्स में भी। सो eventstickets.co.nz पे जाके यू नीड टू बाय योर टिकट्स। वहाँ पे सर्च कीजिए गरबा नाइट विद राज गढ़वी, तो आपको लिंक मिलेगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो इसके बारे में आप स्वप्निल शाह से बात कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 0224394736। इट्स 0224394736।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
3: Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
5: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
6: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
7: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
6: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
7: Mashallah, bahut acha, very nice.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: Are you ready to go home?
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
10: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
11: Kundi khadao, ya seedha andar aao.
12: Main laun apna A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

422 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। कॉकटेल 2 मूवी का ये रीमेक गाना आप यहाँ पे नीरज श्रीधर एंड कविता सेठ की आवाज में सुन रहे थे। नाउ द अपडेट रिगार्डिंग सोनम वांगचुक, ही स्टिल ऑन द हंगर स्ट्राइक। अब तो एक्चुअली में उनकी हेल्थ जो है डॉक्टर्स ने क्रिटिकल फेज में बता दिया गया है। सो इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक जो उन्होंने की है, मतलब 20 दिन हो चुके हैं कुछ भी उन्होंने नहीं खाया है। एंड राइट नाउ उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है। इनफैक्ट ऑर्गन फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया है जो उन्हें चेक कर रहा है वहाँ पे। सो इंडिया में दिल्ली में जंतर मंतर में, जो कि एक प्रोटेस्टिंग साइट है, वहीं पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ ओपन टू everyone। और उनके साथ एक्चुअली में काफ़ी स्टूडेंट्स भी है जो स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए हैं। सोनम वांगचुक जो है ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, इन्होंने रिसेंटली एक नई एग्ज़ाम लीक हुआ था, नेशनल एग्ज़ाम वहाँ पे लीक हुआ था इंडिया में, एंड जिसके बाद तकरीबन 20 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली थी। एंड ही इज़ आस्किंग वहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी के बारे में कि कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम्स लीक होते हैं, एंड इसमें स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है जो साल भर तैयारी करते हैं एक एग्ज़ाम की, एंड उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। एंड कईयों को घर से प्रेशर होता है, कईयों को पैसे की तंगी होती है कि बाद में उन्हें एक एक्सट्रीम स्टेप भी लेना पड़ता है। ऑल्सो यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो डिमांड है वो इररेगुलरिटी के बारे में है कि कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस एंड पेपर लीक्स है इनके ऊपर, एंड लॉन्ग टर्म एक रिफॉर्म जो है ये होना चाहिए एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम का, जहाँ पे हर किसी के लिए फेयरनेस हो, हर एक स्टूडेंट के लिए फेयर हो वो, एंड ऑल्सो जस्टिस फॉर द फैमिली, जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनके लिए भी जस्टिस, उनको कोई जवाब तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी तक कोई बातचीत उनके साथ नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी हाई कोर्ट ने ज़रूर स्टेप इन किया है, उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं वाइटल हेल्थ मेट्रिक्स सोनम वांगचुक के, अगर ज़्यादा हेल्थ ख़राब होती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग उनके लिए हो सकता है, because it's almost like 20 days and no food at all. So let's see कि आगे क्या होता है, कुछ भी है इनफैक्ट यहाँ पर आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। बट ऑन दिन अदर साइड दुबई में एक दुबई वैसे देखा जाए तो एक ऐसी जगह है जो कि इनोवेशन को लेके हमेशा आगे रहती है, जैसे कि क्लाउड सीडिंग में, मतलब अगर वहाँ पर बारिश नहीं होती तो क्लाउड सीडिंग कर देते हैं जिससे बारिश हो जाती है। बहुत सारी और भी इनोवेशंस वहाँ पे होती है। जो लेटेस्ट इनोवेशन वहाँ पे हुई है एक स्मार्ट मशीन की हुई है दैट विल प्रोवाइड फ्रेश ब्रेड अराउंड द क्लॉक टू दोज इन नीड। सो नॉट जस्ट दैट कि जो मशीन्स है विल आल्सो बी एबल टू कलेक्ट डोनेशंस फ्रॉम द पीपल जो इंटरेस्टेड है वहाँ पे डोनेशन करने के लिए। सो ये उन्होंने एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है ब्रेड फॉर ऑल। तो बेसिकली ये मशीन्स वो लगाने वाले हैं जहाँ पे डिफरेंट जगह पे द पीपल जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो वहाँ से मशीन से किसी भी दिन जाके जो ब्रेड है ये उठा सकते हैं।

0: 4 एट द मोमेंट हो चुके हैं यहाँ पे. इट इज फ्राइडे और मेरे साथ यहाँ पे आरजू शामिल हो चुकी है. गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून.
0: हाउ आर यू?
1: आई एम रियली गुड. आई एम सो एक्साइटेड. वीकेंड.
0: ये वीकेंड कैसा जाने वाला है? हाउ इज दिस वीकेंड प्लान फॉर यू?
1: मेरी वीकेंड कल मेरी सिस्टर की बर्थडे है, मेरी दीदी के, और उसके बाद संडे में संडे वर्ल्ड कप की थर्ड प्लेस की मैच देखनी है. आई बॉट अ प्रोजेक्टर, सो मैं प्रोजेक्टर में देखूंगी. एंड देन
0: ओह वाओ,
1: आई एम जस्ट एक्साइटेड. रिलैक्स संडे.
0: रिलैक्सिंग संडे.
1: आपका?
0: या सेम एक्चुअली. मैं मैच का भी प्लान है एंड मेरा वीकेंड मेरे को लगता है रिलैक्सिंग जाने वाला है. होप सो रिलैक्सिंग जाने वाला है. मैं जब भी बोलती हूँ मेरा वीकेंड रिलैक्सिंग जाएगा, इट्स ऑलवेज ऑपोजिट.
1: आप वॉक्स में नहीं जा रहे?
0: जा रही हूँ. मेरे को लगता है मेरे को ये वीकेंड जाना चाहिए.
1: आप जाओ. आई वांट टू वॉच टिकटॉक. या टिकटॉक. वॉक की टिकटॉक.
0: ओके. सो मैंने ना आर्टिकल पढ़ा है आरजू. आर्टिकल सेज कि जेन जी आर फॉलिंग बैक इन लव विद ओल्ड थिंग्स. सो ऐसी चीजें जो हमने टेक्नोलॉजी में हमने पीछे छोड़ दी है, जेन जी आर लविंग देम. उनको वो चीजें लाइक एस्थेटिक वे में मिल रही है तो दे आर लविंग इट. सो आई वांट टू चेक विद यू बिकॉज यू आर जेन जी एंड लेट्स सी.
1: Okay. Also, matches. By the way, Gen Z के मैं टॉप में हूँ.
0: हाँ,
1: like,
0: हाँ,
1: मतलब
0: it's okay. बच्चे
1: हाँ, हाँ, okay, okay. हाँ. I'll try.
0: मतलब इसको हो गया, मेरे को बच्ची बोल रही है. टॉप में हूँ. यही प्रॉब्लम है Gen Z के साथ. So, okay. If you are a Gen Z, या फिर आपके बच्चे Gen Z है, तो अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे तो आप भी यहाँ पे कॉल करके या मैसेज करके बोल सकते हैं. सो नंबर वन, वायर्ड हेडफोन्स आर बैक.
1: No, for me not.
0: For you not. But do you know anyone like Gen Z?
1: Yeah, I've seen the generation, like teenagers.
0: Yeah, teenagers.
1: I've seen them with wired headphones.
0: Wired headphones, they loving it. Tumara, I understand because you are into the such kind of profession, jisme you like wired headphone only on laptop.
1: Only laptop. Yes, yes, yes.
0: Not otherwise.
1: Not
0: right?
1: Otherwise. Not the Bluetooth.
0: You have to use other headphones.
1: Yes.
0: Okay. Printed photos are returning.
1: Printed, yeah. Like printed photos. Like print,
0: or Polaroids. Haan, portrait. Haan, yeah, portrait. Yes. Stick karne ke liye photos.
1: Haan, I like them.
0: Yeah. Haan. Beech mein ekdam sab kuch digital ho gaya tha na.
1: Haan.
0: Now yes, the printed photos are back.
1: Main jaake photo booth mein jaati hu with my friends and then it comes out with the printed photo and we stick it fridge mein.
0: Even you are doing it. Okay.
1: Yeah.
0: Board games are replacing screens. Like pehle screens, like everyone used to just watch together something. Now it's more about board games.
1: No, at the on my phone only.
0: Yeah, lagi hai. Ye top pe hi hai
1: phone. I told you.
0: But do you like board games?
1: Not as much. Like okay. I don't mind playing it. But I know because my cousin, she loves board games and she forces
0: and
1: us to play.
0: And she's Gen Z.
1: No, she's millennial.
0: Okay. Meko lagta hai board games is with millennials.
1: No, even that's what I think. See?
0: Board games, yeah.
1: Yeah.
0: Okay, analog clocks.
1: Analog clocks?
0: Isko to term hi nahi pata hai.
1: Oh, ghadi.
0: Wall pe lagate.
1: Ha, nahi. Digital. Phone ki watch.
0: Not dusri wali. Nahi pasand hai. Nahi pasand. Okay. Digital cameras.
1: Yes.
0: Yes. Huh. Okay. Yeah. Paper books over screens. But no, you prefer screen.
1: I'm with the screen. You.
0: आप भी बताइए आपका क्या choice है? And yeah, chess is cool again.
1: Chess.
0: Yeah. Not for her though, but do you know anyone?
1: No.
0: No. Chess is not cool. बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसमें.
1: So sounds hard.
0: Yeah, yeah, it is hard. मेरे को भी इतनी अच्छी से नहीं आती. Writing in notebooks again. Do you like writing?
1: I like writing actually.
0: Notes likhna, yes, wo sab cheeze.
1: I like paper mein writing, yeah.
0: Yeah, even well, I'm not Gen Z, but I'm also back to notebooks. Jisme you know, pehle main kya karti thi, apne phone mein notes nikal ke mere ko aisa list banati thi. But nowadays aajkal main apni diary mein likh rahi hu.
1: And wo, you know, like when you finish what task, like to write, like cross it off with the pen is so much better, no?
0: Satisfaction.
1: Yeah, satisfaction. Yes.
0: So guys, this is one thing you should try. आप ना लिखो, आपको दिन में जो नेक्स्ट डे में जो काम करना है, मे बी वीक में जो चीज़ें आपको अचीव करनी है, इफ़ यू राइट इट डाउन ना, और उसके बाद जब आप उसको चेक करते हो ना या उसको क्रॉस करते हो, ओ माई गॉड, बहुत ही अच्छा लगता है.
1: यस, वो स्क्रीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता.
0: वो स्क्रीन, वो सेटिस्फेक्शन कभी रिप्लेस, स्क्रीन में क्या करेंगे उसको, बैकस्पेस कर देंगे ना, डिलीट कर देंगे हम.
1: या एग्जैक्टली, एंड डिलीटेड में जाके, रिसेंटली डिलीटेड में, इट्स गॉन.
0: या इट्स गॉन. सो लाइक उसको क्रॉस करना इज नेक्स्ट लेवल ऑफ फीलिंग. सो वो भी आप शेयर कीजिएगा. करते सीडी प्लेयर्स?
1: नो
0: नो.
1: ओह एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट,
0: सम
1: प्लीज, मेरे पास सीडी प्लेयर तो नहीं है, बट आई हैव बॉट सीडी एल्बम्स.
0: ओह वाओ, ओके. एंड अलार्म क्लॉक, फिजिकल अलार्म क्लॉक, आई डाउट.
1: नो, या
0: even I doubt this. Maps instead of GPS.
1: No, who's doing this? Who wrote this post? They're wrong.
0: Yeah, I know. And they say libraries are busy again.
1: मैंने
0: book नहीं, इसको नहीं.
1: हाँ, ये मेरी wrong person.
0: मैंने तुम्हारा old McDonald's सुना हुआ है, तो I know.
1: आपको libraries पसंद है?
0: मेरे को once upon a time yeah. I like libraries में जाना, मतलब not वहाँ पे बैठ के पढ़ना, but I like
1: look at people.
0: Yeah, I like the smell of library.
1: Smell?
0: Yeah, वो books की सारी smell होती है अंदर, तो मतलब that kind of वो, yeah, वो वाला मेरे को अच्छा लगता है. And wrist watch over the smart watch.
1: Wrist watch yakni
0: analog, just make proper analog वो वाली clock. Yeah.
1: Yeah, I think that looks better. I don't like when people I won't say.
0: अरे बोलो ना.
1: You know, कभी you know like sometimes वो smart watch fit के साथ नहीं जाता ना.
0: हाँ.
1: Sometimes they wear something nice and उसके बाद इतना
0: smart watch लगा देते हैं, तो okay.
1: I like वो then like that
0: proper जो जिसपे proper वो सुइयों के साथ
1: maybe yeah that looks more

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14 डिग्रीज, आज का 11 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. ओवर द वीकेंड इट्स अ ब्राइट एंड सनी वेदर, गुड वेदर रहने वाला है.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: 5:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. पावर ड्राइव एट 5 आप यहाँ पे सुन रहे हैं. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड वीकेंड आ चुका है. क्या करने वाले हैं इस वीकेंड पे, क्या प्लानिंग है आपकी, यहाँ पे आप जरूर शेयर कर सकते हैं. ओवर द वीकेंड वैसे आपको बता दूं कि संडे को आरजू स्टिल हियर. आरजू तुम खुद ही बता दो वैसे संडे को क्या होने वाला है मॉर्निंग शो में. वेरी गुड इवनिंग आरजू.
5: वेरी गुड मॉर्निंग. गुड इवनिंग.
4: मेरा दिमाग संडे को मॉर्निंग होने वाला है.
5: सॉरी मेरे लंबी था दिन लंबा. मेरी संडे शो में क्या होने वाला है ये आपको खुद सुनना पड़ेगा. 6 AM में 12 PM तक.
4: 6 AM to 12 PM.
5: यप
4: ठीक है. एंड आरजू को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, आरजू वैसे ओरिजिनली नेपाल से बिलोंग करती है.
5: यप
4: है ना. कुछ और बताना चाहोगी आज नेपाली में, कुछ सिखाना चाहोगी हमें
5: नेपाली में. आपको क्या सीखना
4: है जैसे anything? हाँ अगर मेरे को सीखना है यहाँ पे कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा जाए. इसकी आप जरूर सीख लेंगे मेरे को लगता है.
5: I can't remember weekend कैसे बोलते हैं नेपाली में. We usually because like Hindi you say English words a lot. No,
4: so weekend वैसे ही बोल दो.
5: No, okay ठीक है. उसको हिंदी हिंदी उसको weekend एकदम रामरो होस. हज़ुको weekend.
4: हज़ुको
5: weekend.
4: Weekend
5: एकदम रामरो
4: रामरो
5: होस.
4: होस.
5: Yep.
4: रामरो होस means कि बहुत अच्छा है.
5: हाँ so it's like हज़ुको weekend your weekend एकदम रामरोस बहुत अच्छा जाए.
4: हज़ुको वीकेंड रामरोस जाए.
5: नो आपको हज़ुको वीकेंड एकदम
4: किसी ने कैच किया तो यहाँ पे कॉल करके बताओ प्लीज. 0800 00 हम आप ये बोल के दिखाइए. 0800 00 4866. आरजू गोना हेल्प यू. अगर आप कुछ आज नेपाली सीखना चाहते हैं वी हैव फर्स्ट हैंड ओवर हियर. सो बताओ आरजू कैसा था
5: हज़ुको वीकेंड.
4: हज़ुको वीकेंड
5: एकदम रामरोस.
4: एकदम रामरोस.
5: यस. ओह यू डिड इट.
4: क्या बात है. हज़ुको वीकेंड एकदम रामरोस.
5: परफेक्ट. ए प्लस.
4: बहुत ही परफेक्ट जाए. सो एनी वॉलंटियर ओवर हियर जो कॉल करना चाहते हैं 0800 00 हम पर 0800 00 4866. और आप कुछ और ट्रांसलेशन भी पूछ सकते हैं. इट्स गुड टू लर्न न्यू लैंग्वेज. पता है न्यू लैंग्वेज से क्या होता है आरजू.
5: न्यू लैंग्वेज से आप न्यू पीपल से कनेक्ट हो सकते हो. डिफरेंट कल्चर्स सीख सकते हो.
4: एंड हमारी ब्रेन एक्टिविटी जो है ना
5: वो भी
4: वो बेटर होती है.
5: दैट्स गुड.
4: सो इफ यू आर फीलिंग टायर्ड राइट नाउ तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा.
5: एक्टिव हो चुका है अभी.
4: हज़ुको वीकेंड एकदम राम रिहोस. क्या बात है. बहुत ही इजी था ये. इसको कोशिश करूंगी कल तक याद रखने के लिए.
5: ठीक है. आपका मंडे आपको मैं पूछूंगी.
4: या मंडे पूछना. सो विल स्टार्ट विद दिस वन सॉन्ग जो कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल गया ये गाना. तो ये हम यहाँ पे शुरू करेंगे. एंड दिस गाना इज़ एक्चुअली ना इसमें एक चाय की टपरी पे ये गाना बना है. तो इसमें इसकी जो वीडियो है वो जाके जब चेक करोगे तो एक चाय वाला है जो वहाँ पे है. एंड इस गाने को साथ में वो उसने हेल्प किया. उसके लिरिक्स में भी हेल्प किया था.

पांच बज के 9 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू बेन एफर आपके भी मैसेज के लिए। एंड करण औजला का गाना इस आवर में आपके लिए कभी भी प्ले हो सकता है गाइस। ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके ऑकलैंड में बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्ट ऑफ द ईयर ये होने वाला है। स्पार्क अरीना में 25 अगस्त को ये परफॉर्म करने वाले हैं स्पेशल गेस्ट इकी के साथ। सो अगर आपको वो डबल पास जीतना है, आज आपको ड्राइव शो में आखिरी मौका मिल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। दिस इज़ योर लास्ट चांस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। करना क्या है, इसी आवर में आपके लिए करण औजला का एक गाना प्ले होने वाला है। जैसे ही आप वो गाना सुनते हैं, गाने का नाम KA पहले आपको ज़रूर लिखना है, करण औजला का KA स्पेस देन आपका गाने का नाम और आपका नाम, ये तीनों इन्फॉर्मेशन लिख के भेज डालिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे यू कैन विन अ डबल पास, मतलब आप अपने साथ किसी और को भी लेके जा सकते हैं। टिकट्स के लिए यू कैन विजिट hum.rova.nz या फिर livenation.co.nz पे आपको और भी जानकारी मिलने वाली है। करण औजला का पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर 25 अगस्त को होने वाला है स्पार्क अरीना में। सो मेक श्योर कि अपने टिकट्स आप टाइम पे बुक कर लीजिए।

0: Punjab.com because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: accurate traffic.
1: Kitchen Mania, 17th birthday.
2: Cloudy periods overnight for Auckland, a low of 11. The northern is heavy between the Harbour Bridge and the Esmond. On the northwestern, it's a bit slow from Waterview to Rosebank. Could be an incident at Rosebank. On the southern, heavy southbound from Market Road to Sylvia Park and coming north from East Tamaki Road to Green Lane. Still busy on the southwest and slow from Wiri to Mangere Bridge and south from Mangere Bridge right to the southern.
1: You could win 10k when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
3: Discover the magic at Go Bananas Chaike, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: So jaldi join karein to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. So deher mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday,
4: but the adventure everyone talks about?
5: Imagine chasing waterfalls,
4: wandering lush rice terraces,
5: catching unforgettable sunsets,
4: and relaxing at iconic beach clubs.
5: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
4: discovering incredible temples,
5: tasting world-famous street food.
4: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
9: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
10: मुझे भी।
9: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाएं।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: 5:19 हो चुके हैं. पावर ड्राइव एट 5 फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं कॉमेडी नाइट विद कृष्णा अभिषेक राजीव ठाकुर. ये कल ही इवेंट होने वाला है. रिमेंबर दिस. इंडिया के बिगेस्ट टेलीविजन कॉमेडी सुपरस्टार्स यहाँ पे पहुँचने वाले हैं आपके लिए परफॉर्म करने के लिए. अगर टिकट्स आपने अभी तक नहीं खरीदी है, यू कैन चेक द लक. यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट bookmyevent.co.nz. वहाँ पे सर्च कीजिए द ग्रेट कॉमेडी नाइट, आपको लिंक मिलेगा एंड अपने टिकट्स वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं. कल विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये जो इवेंट है ये होने वाला है, जहाँ पे आप फुल एंटरटेन एक्चुअली में इस इवेंट के लिए हो सकते हैं. बाली एंड बैंकॉक अगर आप जाना चाहते हैं गेटवे मेरे और रुजबे के साथ, एंड ये हम प्लान कर रहे हैं March 2027 में. तो ट्रैवलिंग डेट्स हमारी है 23rd March से लेके 2nd April, जो कि बीच में ईस्टर वीकेंड भी आता है. तो आपको करना क्या है, आपको ड्राइव लिख के भेजना है 5599 पर. आपके पास एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल कीजिएगा एंड आपको जो टिकट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, आइटिनरी जो है, ये आपको ईमेल कर दी जाएगी विद प्राइसेस. ये जो आइटिनरी बनाई है सन टूअर्स ने, इन्होंने इसमें टिकट्स भी इंक्लूड की है, जिसमें यहाँ से ऑकलैंड टू बाली, देन बाली टू बैंकॉक एंड देन बैंकॉक टू वापस ऑकलैंड. एंड रिमेंबर, कंसीडर आपको ये भी साथ में करना है व्हेन यू लुक एवरीथिंग, कि ईस्टर का जो टाइम होता है यूजुअली उस समय पर बहुत ही महंगी टिकट्स होती है. तो कंसीडर एवरीथिंग इन माइंड, वो आपको कंपेयर करना है. एंड देन देयर इज़ अ 5-star अकोमोडेशन एट एवरी प्लेस एवरी डे के लिए. एंड देन 3 times का खाना भी, ब्रेकफास्ट इज ऑफकोर्स इंक्लूडेड विद अ होटल अकोमोडेशन, देन लंच बाहर होगा और डिनर भी बाहर होगा. एंड बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, दैट इंक्लूड्स क्रूज भी है डिफरेंट डेज में एंड और ढेर सारी, जैसे बाली में जो यू नो वो फेमस स्विंग है जहाँ पे आप जाते हैं लहराते हुए, आपकी फ़ोटोज़ होती है काफ़ी लोगों की, आपने देखी होगी, तो वो भी है इंक्लूडेड इसमें. एंड और भी ढेर सारा कुछ. इनफैक्ट व्हेन अनिल भाटिया फ्रॉम सन टूअर्स जब वो यहाँ पे थे, उन्होंने एक्चुअली में ये भी बताया था कि वहाँ पे वो कुछ गिव अवेज भी करने वाले हैं. एंड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ फॉर्म फिल कीजिए, बिकॉज फॉर्म फिल करने में तो कुछ नहीं जाता है, इज़ जस्ट टू गेट टू नो द आइटिनरी एंड देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. एंड ऑल्सो बिकॉज अगर आप काफ़ी समय से किसी हॉलीडे पे नहीं गए हैं ना, तो आई थिंक यू शुड गो. ये एक बार ये हो जाता है कि हम ना अपनी लाइफ में बहुत सारे जो काम है ये तो हम करते रह जाते हैं, बट घूमने का टाइम अक्सर हमें नहीं मिल पाता है. सो यस, अगर आप काफ़ी समय से नहीं गए हैं तो दिस इज़ आई थिंक हाई टाइम यू नीड टू गो टू हॉलीडे. एंड दिस इनफ टाइम प्लानिंग करने के लिए. March 2027 की बात कर रहे हैं हम, अभी जुलाई है, सो आपके पास काफ़ी समय है. जो आपको छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, बेसिकली अराउंड 6 या 7 days की अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज बीच में पब्लिक हॉलीडेज आ रही है, ईस्टर वीकेंड बीच में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअली में ये जो प्लान है ये बनाया गया है. सो या आप ड्राइव लेके भेजेंगे 5599 पर, तो आपको ऑटो रिप्लाई में फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे यू विल गेट द होल इंफॉर्मेशन कि क्या क्या वहाँ पे होने वाला है. फिल द फॉर्म एंड उसके बाद जब लिंक आएगा, हैव डिस्कशन विद योर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, एंड देन यू सी इफ़ यू कैन मेक इट.

0: go.nz
1: 20 जुलाई को जब हम नेक्स्ट ड्राइव शो में मिलेंगे तब तक हमें पता चल जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप के विनर्स जो है ये कौन है. यू नो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें तो बहुत हो रही है. यू नो देयर वाज अ टाइम जो फुटबॉलर्स रेगुलरली पिच पे ज्वेलरी पहन के जाते थे. इनफैक्ट डेविड बेकहम अपने मिक्स फैशन के लिए बहुत जाने जाते थे. उनका जो फैशन होता था फुटबॉल के साथ इसके लिए वे बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. सो वेयरिंग चेन्स एयररिंग्स ब्रेसलेट्स इवन रिंग्स इट वॉज क्वाइट कॉमन. लेकिन धैन धीरे धीरे जो फीफा थे इन्होंने लॉ कर दिया कि कोई भी ज्वेलरी पहन के नहीं जाएगा ग्राउंड पे बिकॉज रिस्क ऑफ इंजरीज हो सकता है कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट. एनीवे अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन के बीच में मैच होने वाला है एंड अर्जेंटीना के ऊपर कुछ फाइन्स भी होने वाले हैं बिकॉज रिसेंटली काफ़ी कुछ बवाल भी हुआ है वर्सेस इंग्लैंड जब उन्होंने खेला था कंसिडरिंग उनकी हिस्ट्री बहुत ही डेंजरस रही है. सो काफ़ी लोगों ने जो फ्लैग्स थे कैरी किए थे जो इंग्लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव थे. सो अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन के मैच के लिए ना एक 2021 का ट्वीट है बेसिकली किसी ने एक्स पे अब जिसे हम एक्स कहते हैं उस समय पर ट्विटर था वहाँ पर लिखा था कि अर्जेंटीना जस्ट बीट स्पेन एट 2026 वर्ल्ड कप फाइनल 3-2 के साथ. ये किसी ने 2021 में प्रेडिक्शन की हुई है कि अर्जेंटीना ने स्पेन को 2026 में 3-2 के साथ हराया. नाउ लेट्स सी ये जो 2021 की जो प्रेडिक्शन है ये सही निकलती है या फिर नहीं सही निकलती. वेल ह्यूमन स्पेकुलेशंस तो बहुत सारी हो रही है और आजकल टाइम है एआई का तो एआई ने भी स्पेकुलेशंस की है. सो एआई की ना प्रेडिक्शंस आई है. एआई कहता है सो दिस इज़ वन आर्टिकल याहू स्पोर्ट्स पे एक्चुअली में ये आर्टिकल है. सो इसमें एआई की प्रेडिक्शन कहती है कि जो विनर है वो स्पेन होगी एंड स्पेन विल विन बाय 2-1. सो लेट्स सी कि 2021 का जो ट्वीट 3-2 से अर्जेंटीना को जिता रहा है ये सही निकलता है ये मंडे को हमें पता चलेगा या फिर स्पेन ये एआई जो कह रहा है कि स्पेन 2-1 के साथ जीतेगा अर्जेंटीना से ये सही निकलता है जिसमें लेमिन यामल जो है इन्होंने भी गोल किया है और मेसी ने भी गोल किया है एंड दे बोथ मेट when he was baby and Messi was like I think 17 या 18 year old something. Anyway, so AI favor क्यों कर रहा है स्पेन को उसका रीज़न है आउटस्टैंडिंग डिफेंस को लेके कि जो स्पेन है दे हैव आउटस्टैंडिंग डिफेंस जो मिडफील्ड डोमिनेंस है वो स्पेन के पास ज़्यादा है उनका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा है जो उनका बिगेस्ट एडवांटेज है एंड AI का बिलीव है कि जो अर्जेंटीना है दे लुक थोड़ा सस्पेक्टेबल इन मिडफील्ड एंड उनके जो कमबैक्स हैं बहुत ही लेट होते हैं. ये हमने रियलाइज़ किया उनके मैचेस में कि कमबैक्स बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. आप कौन सी टीम को पिक कर रहे हैं आप भी यहाँ पे बता सकते हैं. इज़ इट अर्जेंटीना फॉर यू इज़ इट स्पेन फॉर यू. पर्सनली आई विल से मेरे घर पर एक्चुअली में हमेशा पोस्टर एंड एवरीथिंग चांट्स लगे रहते हैं मेसी के तो मेरे इनबिल्टी वो हो चुका है कि अर्जेंटीना इज़ द टीम. सो आपकी क्या टीम हो सकती है आप भी यहाँ पे बता सकते हैं 5599 पर. इज़ इट स्पेन फॉर यू इज़ इट अर्जेंटीना दोनों पहली बार एक्चुअली में भिड़ने वाली हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में.
0: To you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

लोगों ने स्पेन लिख के भेजा है. जबीन आपका मैसेज भी आया है, यू सेड कि यू लव लामिन यमाल सो स्पेन फॉर मी. सो लेट्स सी, मे द बेस्ट टीम विन. एंड राहत फतेह अली खान भी आपके सुपर सिटी में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं. अगले वीकेंड पे 25 जुलाई को इनका शो होने वाला है, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. राहत फतेह अली खान का मैंने लास्ट शो अटेंड किया था, ट्रस्ट अरीना में ही था. एंड क्या अमेजिंग शो था गाइज. मतलब एक तो होता है ना कि आप यहाँ पे रेडियो पे या फिर वीडियोस में उनके गाने देखते हैं, यहाँ पे आप उनके गाने सुनते हैं, आपको मज़ा आता है कि बहुत ही अच्छे वे से ये गा रहे हैं. लेकिन जब उनके सामने आप वहाँ पे बैठे होते हैं, जब आप लाइव उनको सुनते हैं, इट्स अ नेक्स्ट लेवल फीलिंग. क्योंकि वो सिर्फ अपने गाने ही नहीं गा रहे होते, वो अपनी फीलिंग बताते हैं साथ में, बहुत सारी बातें करते हैं वो साथ में, कम्युनिकेट करते हैं. एंड बहुत मेरे को लगता है कि ब्लेस्ड है हम कि हमें ऐसे आर्टिस्ट को लाइव देखने का यहाँ पे मौका मिलता है, न्यूजीलैंड में, एक छोटी सी कंट्री में हमें मौका मिलता है देखने का. सो कई बार अगर कहीं और किसी और कंट्री में हो तो मे बी आपको वो मौका ना मिले, बिकॉज़ कई बार टिकट्स ही नहीं आपको मिलती है. बट राहत फतेह अली खान को देखने का मौका यहाँ पर आपको लाइव मिल रहा है. सो आई विल से डू नॉट मिस दिस चांस. उनके शो में ना कवालीज भी होती है, सूफी गाने भी होते हैं, बॉलीवुड गाने भी होते हैं एंड डांस नंबर्स भी होते हैं. ऐसा कमाल एक्चुअली वो करते हैं अपने शो में. इट्स अ फुल पैकेज शो एवरी टाइम एंड आई लव द प्रोडक्शन ऑफ हिज इवेंट एज वेल. जिस वे से उनके शो की पूरी प्रोडक्शन होती है, जो वो गा रहे होते हैं, पीछे स्क्रीन में जो वीडियोज़ होती है, दे आर वेरी नाइस. सो यू शुड एक्सपीरियंस दिस शो. सो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप इस इवनिंग का मज़ा ले सकते हैं ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई को. टिकट्स के लिए dryTickets.com आपको विजिट करना है. वहाँ पे जब आप राहत फतेह अली खान सर्च करेंगे, आपको लिंक मिलेगा टू बुक द टिकट.

0: से PMI।
1: और आज 6 बजे ट्रेंड मेकर्स में आप गाने सुनने वाले हैं पीसी के, प्रियंका चोपड़ा जोनस के। प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे वैसे कल है, 18 जुलाई को है, बट इट्स अ सैटरडे, सो आज ही हम सेलिब्रेट करने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे। एंड गानों की लिस्ट बहुत कमाल है, सो यू नो एक गाना तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा गाना है प्रियंका चोपड़ा का जो 6 के 7 की लिस्ट में 100% होना चाहिए, जो प्रियंका चोपड़ा को डिफाइन करता है, वो गाना लिख के भेजिए। इनफैक्ट इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का एक गाया हुआ गाना भी है, एक गाना जो प्रियंका चोपड़ा ने एज अ डेब्यू किया था व्हेन शी मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, तो उस समय पर उसने एक डेब्यू किया था गाने का अपने एज अ सिंगर उसने डेब्यू किया था। अगर वो गाना का नाम आपको याद है तो लिख के भेजिए 5599 पर, अदरवाइज फुल सॉन्ग वैसे आप सुनने वाले हैं नेक्स्ट आवर में, एंड वी गोना टॉक अबाउट बिट मोर अबाउट प्रियंका चोपड़ा बिटवीन 6 to 7।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: छह बज के 4 मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. कैसे हैं आप? ट्रेंड मेकर्स आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है और आज प्रियंका चोपड़ा जोनस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. इट इज आज नहीं सॉरी कल वो सेलिब्रेट कर रही है 18 जुलाई को, लेकिन टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग क्योंकि कल ट्रेंड मेकर्स नहीं रहने वाला है. सो प्रियंका चोपड़ा की जर्नी अगर देखी जाए तो बरेली से ग्लोबल आइकॉन तक पहुँची है उसकी जर्नी. किस वे से उसने सक्सेसफुली ब्रिज किया द गैप बिटवीन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड अपनी ही जर्नी को उन्होंने किस वे से मोटिवेट किया और बाकियों को इसके ऊपर भी मोटिवेट किया. काफ़ी लोग हैं प्रियंका चोपड़ा की लाइफ जर्नी के भी फ़ैन हैं, काफ़ी लोग उनकी मूवीज़ के फ़ैन हैं, काफ़ी उसकी पर्सनैलिटी के फ़ैन हैं. सो प्रियंका चोपड़ा वैसे देखा जाए शुरुआत इनकी एक पेजेंट से हुई थी जो कि इनके लिए लॉन्च पैड था एट Just 18 year old, after finishing a runner-up in Miss India, she went on to win Miss World 2000 ka title. And jisse, you know, public eye mein pehli baar Priyanka Chopra jo thi, us samay par aayi thi. But Bollywood stardom shuru hone mein zyada time nahi laga because 2000 mein unhone title jeeta. And 2003 mein, she made her Hindi movie debut with a movie, The Hero, jo ki love story of spy. I think this isme Sunny Deol the. But instead of sticking to safe glamour के roles में उन्होंने काफ़ी risk भी लिया. She played villain बहुत ही जल्दी next year में 2004 में एतराज movie में. Villain as in कि उनके character में grey shades थे उस movie में. And then she did a very different movie Fashion. Fashion movie के लिए उनको National Film Award भी मिला. नो फैशन मूवी एक ऐसी मूवी थी जिससे यू नो उनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की. एक डिफरेंट साइड उनका एक्चुअली में देखा. वेल प्रियंका चोपड़ा के आज हिट सॉन्ग्स हम यहाँ पे सुनने वाले हैं एंड थोड़ी देर में प्रियंका चोपड़ा की आवाज़ में गाया हुआ गाना भी हम यहाँ पे सुनने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड. बट शुरुआत तो इसी गाने से बनती है.

0: 6:12 हो चुके हैं ट्रेंड मेकर्स। फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं प्रियंका चोपड़ा का स्पेशल सेगमेंट। आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं वेल प्रियंका चोपड़ा की इंटरव्यूज भी काफी बोल रही है अबाउट हर जर्नी, उनकी खुद की जर्नी एक्चुअली में काफी ज्यादा बोल रही है, जहाँ पे एक बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म जहाँ पे शी वॉज एट पीक ऑफ हर करियर एंड शी फेस्ड फ्यू थिंग्स, जहाँ पे बॉयकॉट कल्चर उन्होंने फेस किया एंड देन वहाँ से डिसाइड करना कि उस कंट्री से मूव होके कहीं और जाके शुरू से शुरुआत करनी है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन जो अपने करियर के पीक में होता है, बट उनका कॉन्फिडेंस कभी प्रियंका चोपड़ा का कभी कम नहीं हुआ इन चीज़ों को लेके। आई थिंक दिस वॉज द वन ऑफ द रीज़न शी इज़ एट द प्लेस राइट नाउ जहाँ पे ग्लोबल आइकॉन वो बन चुकी है, ग्लोबली लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी पर्सनालिटी की वजह से, उनकी मूवीज़ की वजह से, उनकी सीरीज़ की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। सो देयर वाज दिस वन इंटरव्यू बिट जहाँ पे उनको एक अवार्ड दिया गया था ग्लोबल स्टेज पे, जहाँ पे शी शेयर्ड फ्यू थिंग्स, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
1: मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुश्किल होता है किसी और देश में जाना और उस देश में जाके जब आपको पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी कम्प्लीटली समथिंग वेरी डिफरेंट एंड टू स्टैंड योर ओन ग्राउंड एंड से कि नहीं आई विल नॉट बी लेस देन व्हाट आई एम यूज्ड टू इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आई वांट टू थैंक एवरीवन ओवर देयर ऑन दोज अपर स्टैंड्स एंड आई थैंक ईच एंड एवरी डायरेक्टर हु आई हैव वर्कड विद इन दीज 13, 15 years that I've been in the movie business that have made me strong enough to go into any country, stand in front of any camera and in between action and cut, I know my job. So thank you to the Hindi film industry for teaching me to be the best that I can be. You made me the woman of the year.
0: Yeah, so woman of the year, ये award actually में प्रियंका चोपड़ा को मिला था। She also made her debut जब उनको गाने का हमेशा से शौक था, तो this is the one song जो प्रियंका चोपड़ा ने as a singing career में अपना launch किया था।

0: आज आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Andrews Bay on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
2: Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
4: What if your next holiday wasn't just a holiday,
2: but the adventure everyone talks about?
4: Imagine chasing waterfalls,
2: wandering lush rice terraces,
4: catching unforgettable sunsets,
2: and relaxing at iconic beach clubs.
4: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
2: discovering incredible temples,
4: tasting world-famous street food.
2: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
7: Kogan Mobile, true Aussie value.
6: Terms and conditions apply.
8: Are you ready to go home?
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
9: 621 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. प्रियंका चोपड़ा जोनस कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो उन्हीं का स्पेशल आवर हम यहाँ पे आज सुन रहे हैं ट्रेंड मेकर्स में. प्रियंका चोपड़ा के बारे में बातें की जाती है तो ऑफकोर्स वो एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स इन बॉलीवुड इसका हिस्सा भी बनी थी, मतलब इसका हिस्सा नहीं बनी थी, वो इस हिस्से की वजह से उन्होंने सफ़र ज़रूर किया था, इस वजह से हम ज़रूर कह सकते हैं. काफ़ी समय तक उन्होंने एक्चुअली में इसके बारे में बात नहीं की थी. शी जस्ट पैक्ड हर बैग्स एंड अमेरिका अपना जो करियर है ये शुरू करने के लिए चली गई थी. बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ क्लियर किया था. सो एक डैक्स शेफर्ड इनका एक पॉडकास्ट था जहाँ पे आर्मचेयर एक्सपर्ट इस पॉडकास्ट का नाम है, तो वहाँ पे उन्होंने डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड इसके बारे में पहली बार खुल के बात की थी, जहाँ पे शी कन्फेस्ड कि उन्हें पुश किया गया था इनटू अ कॉर्नर इन द इंडस्ट्री. एंड शी सेड कि आई हैड पीपल नॉट कास्टिंग मी, आई हैड बीफ विद पीपल, आई एम नॉट गुड एट प्लेइंग द गेम. सो वॉज टायर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इसलिए उसने सोचा कि अभी ब्रेक लेनी चाहिए. दो प्रियंका चोपड़ा ने नाम नहीं लिए, लेकिन बाद में इंडस्ट्री इंसाइडर्स जो थे इन्होंने टाइमलाइन को डायरेक्टली पॉइंट आउट किया और बातें बाहर निकाली. इट वॉज अबाउट 2012 में व्हेन शी वॉज फिल्मिंग डॉन 2 विद शाहरुख खान. उस समय पर काफ़ी र्यूमर सर्कुलेट हो रही थी कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी क्लोज है, इनफैक्ट दोनों ने निकाह भी कर लिया है. बहुत सारी ऐसी जो र्यूमर्स थी वो थी उस समय पर, जिसकी वजह से जो पावरफुल कपल है बॉलीवुड का शाहरुख खान गौरी खान, इनकी लाइफ अफेक्ट हुई. सो नाउ गौरी खान के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हमेशा करण जौहर रहे हैं, सो द पावरफुल फिल्म मेकर करण जौहर, सो ही डिड अनऑफिशियल इंडस्ट्री बॉयकॉट अगेंस्ट प्रियंका चोपड़ा. एंड ऐसा ऑफिशियल राइटिंग में नहीं, लेकिन अनऑफिशियल जैसा इंडस्ट्री में होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट किया अगेंस्ट प्रियंका चोपड़ा, जिसमें हाई प्रोफाइल कैंप्स जो थे दे स्टॉप्ड कास्टिंग हर. एंड कोई मूवी जो वो करने वाली थी उनको न्यूज मिलती थी कि शी इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट मूवी. बड़ी बड़ी मूवीज एंड ये सब कुछ उस समय पर चल रहा था. दैट्स हाउ शी थॉट कि यहाँ पे फाइट करने से अच्छा है अपने करियर को एक नई साइड दो एंड मे बी शुरू से शुरुआत करो. एंड देन शी मूव टू अमेरिका. बट जब डॉन 2 की इन्होंने शूटिंग की थी उस समय पर एक इंटरव्यू इन्होंने शेयर किया था एक जगह पे. शी डिड द कॉन्फ्रेंस अबाउट यू नो अबाउट अचीविंग थिंग्स एम्बिशंस के बारे में उन्होंने वहाँ पे शेयर किया था. वेयर शी शेयर्ड अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ डॉन 2
10: to be shown at the Berlin Film Festival. But at the same time, I was invited for the first time to attend the Grammy Awards in LA. Both the events were literally taking place one day apart in completely different time zones, Berlin and LA. My team and everyone around me told me, no, it can never happen. You have to choose what is your priority. And you know what I did? I made some insane connections. Mumbai to London, London to Berlin, Berlin to Amsterdam, Amsterdam to LA, LA to Mumbai in 3 days, and I made it happen. And that's not the only time I've done it. I've done it so many times, over and over again. Why? Because I don't want anyone to tell me I can't have everything. I want to dream of everything and I'll have everything. So rule number 4, be greedy. Be greedy for your ambitions. Be hungry for it.
9: सो ऐसी जो इंटरव्यूज़ है इन्होंने बहुत सारी जगह पे की है कि अपने एम्बिशंस को आपको कैसे अचीव करना चाहिए. एनीवे डॉन 2 के बारे में जहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो ये गाना तो डेफिनेटली डॉन 2 का फिर बनता ही है. कुछ भी कह लो यार, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा की. जस्ट अनफॉर्चुनेट कि दोनों को कभी भी हम साथ में किसी भी मूवी में अब नहीं देख पाएंगे. वेल फॉर ऑब्वियस रीजंस इनको हम साथ में नहीं देख पाएंगे. सो या हम लेकिन पुरानी मूवीज़ उनकी उठा के देख ही सकते हैं जैसे कि ये मूवी थी.

Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.

प्रियंका चोपड़ा के करियर के बारे में बातें करते हैं। मैरी कॉम इज अनदर मूवी जो प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ही सुपर्ब वे से की थी। वेल, इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया था प्रियंका चोपड़ा ने। उमंग कुमार जिन्होंने डायरेक्ट किया मूवी को, उन्हें ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो कि मूवी को अपने कंधों पे अकेली चला सके, मदर इंडिया टाइप ऑफ। तो इसीलिए प्रियंका चोपड़ा का नाम उनके जहन में आया। प्रियंका चोपड़ा इस मूवी के लिए 4 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन में गई थी, जहाँ पर उनको मैरी कॉम जैसे दिखना था। काफ़ी मैसिव प्रेप वर्क था, ट्रेनिंग थी एवरी डे की, बॉक्सिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग थी उनकी। देन एस्थेटिक्स के ऊपर भी काम हुआ, जहाँ पे उनको उनकी जो लुक है मैरी कॉम जैसी दिखाई देनी थी, बिकॉज मैरी कॉम इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो वैसे लुक के लिए एक हॉलीवुड के प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट आए थे बिफोर एवरी शूट उनके फेशियल फीचर्स के ऊपर काम करने के लिए। वेल, इसी नोट पे आपको टाटा बाय बाय कहती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि मैरी कॉम के बाद आप बाजीराव मस्तानी का गाना सुनने वाले हैं। बाजीराव मस्तानी, मतलब चाहे नाम बाजीराव मस्तानी है इस मूवी का, लेकिन दिल तो काशीबाई लेके गई थी जिस वे से प्रियंका चोपड़ा ने वो रोल किया था। एट दैट टाइम शी वॉज शूटिंग फॉर क्वांटिको इन अमेरिका, तो इस रोल के लिए शी वॉज फ्लाइंग बिटवीन USA एंड इंडिया बहुत ही फ्रीक्वेंटली। वहाँ का शूट कम्प्लीट करने के बाद शी वुड फ्लाई बैक टू इंडिया यहाँ का शूट कंप्लीट करने के बाद। बट नोइंग प्रियंका चोपड़ा, शी मेड इट हैपन एंड वी लव्ड काशीबाई का रोल भी। इसी नोट पे आपको टाटा बाय बाय कहती हूँ, आपसे मंडे को मुलाकात होगी मेरी 3 बजे कॉफी ब्रेक में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप हमिंग।

Get a cat,

जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.

तारा मतलब वो तारा जो एक जगह पे ना ठहरे, फिर भी अपनी चमक ना बदले, चाल ना बदले और ना बदले वो चेहरे। अंबर जैसा एक समंदर, चांद है कश्ती पानी में, देखो जोर जवानी में एक किनारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा।

0: Playing Bollywood's biggest hits. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti. Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
3: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
4: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
5: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
6: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: Moisture और ventilation का problem लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
11: From Christopher Nolan.
12: No one could stand between me and home.
11: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, with Zendaya and Charlize Theron. The Odyssey, in cinemas now. Rated M.
13: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
14: Achha?
13: Batao, toada focus. Sada kuch nahi.
14: Shh, Mrs. Singh.
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
17: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.

0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: Every single item in store nationwide is half price at Briscoe's half price sale. So honk for half price off the entire store. All stores open till 9 tonight. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
2: Head into Bunnings today and grab the Surf Professional 9kg laundry powder for just $39. Available in Sun Fresh and Rose Fresh. Don't miss this great value. Stock is limited. Shop online or in store at your local Bunnings warehouse. Bunnings warehouse.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने।
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।

जापान 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा

0: और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
5: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest FlowMate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
6: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
0: कभी भी कहीं भी। The weekend starts here.
6: Friday night rave.
0: Hump.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply. Night Flight.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Budget gaane.

पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन टगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसत मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरीबा खिलाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाओ।

0: Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Night Flight on Hum.
1: Bum chick bum, chick bum bum bum, chick bum.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz. Night Flight.

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: फ्रेश और क्वालिटी हलाल मीट अनबीटेबल प्राइसेस पर अलीज फार्म ऑकलैंड, आपका ट्रस्टेड लाइसेंस एबटवा और बुचर। लिमिटेड टाइम ऑफर, होल गोट कार्कस सिर्फ $15 पर किलो, स्प्रिंग लैम कार्कस $17.50 पर किलो और 30 किलो से ज्यादा शीप कार्कस सिर्फ $12.50 पर किलो। हलाल सर्टिफाइड, प्रोसेस्ड अंडर MPI रिक्वायरमेंट्स और होल कार्कसेस में अवेलेबल है। करी पीसेस कटिंग भी अवेलेबल है। टीज एंड सीज अप्लाई। अलीज फार्म, 1319 अल्फ्रेस्टन रोड, अल्फ्रेस्टन। कॉल 0275301175।
3: Branchy Group 3 Event New Zealand અને Aroha Autos સાથે મળીને પ્રસ્તુત કરે છે રાજગઢવી લાઈવ ઇન ઓકલેન્ડ। તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા। સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ। ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ। ટિકિટ્સ માટે જાઓ events.co.nz।
4: Playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
4: अच्छा
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
8: कभी भी कहीं भी,
9: मस्त मलंग जोग।
8: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
10: आ गया।
8: यू आर लिसनिंग टू अविनीत।
11: क्या रा बुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभी आपके साथ में ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग, जबकि आज है 18th of July। ऐसे में अपनी मुस्कुराहट साथ लेकर आया हूं ढेर सारी आपके लिए बेस्ट विशेस फॉर अ ब्रिलियंट सैटरडे। और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि आज का वो दिन, आज की वो नई सुबह आपके लिए वो खाली कैनवस की तरह है, जिस पर आप एक पॉजिटिविटी, साथ में एक नए पर्पस, एक जज्बा और एक नए लक्ष्य के साथ में इसे पेंट कर सकते हो। तो पूरा का पूरा कैनवस आपके लिए खाली है, ये आपके लिए ही है। आप अपने मुताबिक से इसको भर सकते हैं, किसी भी रंग, जो रंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उससे आप इसे रंग सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस ऑन सैटरडे मॉर्निंग 18th of July। आज की जो पहली किरण सुबह की रहेगी वो आपके लिए ढेर सारा पॉजिटिविटी और पर्पस लेकर आए, यही हम चाहेंगे। ऐसे ही हम साथ मिलकर इस सफ़र को तय करते रहेंगे आपके फेवरेट स्टेशन हम पर 104.2 FM, साथ में रोवा पर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आप देश में कहीं भी हमें सुन रहे हैं, न्यूजीलैंड में हैं आप सुन रहे हैं, या फिर बाहर देश से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको तहे दिल से कहते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग। याद रहे, मैं हूं अभी लेकर आया हूं ढेर सारा प्यार, 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। ऐसे ही आप भी सफर पर है, निकल पड़े हो, काम पर जा रहे हो, नौकरी पर जा रहे हो, या फिर नाइट शिफ्ट करने के बाद में बिल्कुल थके मंदे घर वापस लौट रहे हो, या फिर आप बिस्तर पर पड़े पड़े, खाट पर पड़े पड़े आप हमें सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन योर फेवरेट डायल हम विद अभी।

हम पर यह है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो। चलो आपको लगे हाथ बता देते हैं कि आज वेदर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह का वेदर का आप सामना कर सकते हैं जिस भी शहर में आप हैं। तो खासकर सबसे पहला पहल ओकलैंड के लिए ये बताया गया है कि आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 16 डिग्रीज तक रहेगा दिन में, और ओवरनाइट ये गिरकर 12 डिग्रीज तक हो सकता है। और आज की जो पहली किरण है एट 7:29 AM आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं सनराइज को। और इसके साथ में पूरा का पूरा दिन आपके लिए खासकर ओकलैंडर्स के लिए क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे विद चांसेस ऑफ ओड लाइट शावर्स इन बिटवीन। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेगा। और नेशनली अगर जो देखें तो बताया गया है वेदर फोकास्टर्स ने ये फोकास्ट किया है कि जगह जगह पर काफ़ी शहरों में मिक्स्ड वेदर रहेगा, जैसा कि ओकलैंड का हमने बताया है अभी। इसी तरह से कुछ धूप भी खिली रहेगी और साथ में बादल भी छाए रहेंगे पूरे के पूरे नॉर्थ आइलैंड में। अगर जो देखा जाए तो कैटाया से लेकर और साउथ ऑफ नॉर्थ आइलैंड टोपो तक ये वेदर फोकास्ट किया गया है। हालांकि वेलिंगटन में आज बताया जा रहा है कि धूप खिली रहेगी। इसी तरह से जो साउथ आइलैंड का वेदर है बिल्कुल मिक्स्ड रहेगा बिटवीन सनशाइन एंड बेग्स ऑफ क्लाउड्स। तो ये सभी कुछ आप फोकास्ट किया गया है आपके लिए, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहे। ये आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ताकि आज का जो दिन है इसको लेकर वेदर वाइज आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग आपके आसपास, क्या कुछ हो रहा है, कुछ कम्युनिटी न्यूज और साथ में न्यूज वैसे समाचारों में क्या कुछ है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। इन द मीन वाइल, जबकि आज है 18th of July और शनिवार है, आपका जन्मदिन है या फिर कोई और माइलस्टोन है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 5599 पर जरूर हमारे पास में भेजिएगा। इसके साथ साथ आप अपना जो गुड मॉर्निंग का पहला मैसेज है हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं। मैं हूं अभी आपके साथ में, 6:12 हो चुके हैं।

0: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में एंड इट इज अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग और ऐसे मॉर्निंग में आपके लिए लेकर आया हूं सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी का साथ है अभी से लेकर 12 तक और इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते हुए वी विल फ्लोट थ्रू दिस सैटरडे। और आपको बता दें कि जो समाचारों में है वैसे तो दिन का पहला जो न्यूज़ है आपके लिए रहता है सुबह 8 पर, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूँ सुर्खियों में एक्ट लीडर डेविड सिमो ने एक आइडिया फ्लोट किया है जहाँ पर ये प्रपोज कर रहे हैं कि जितने भी अंडर 16 न्यूजीलैंड है जो हमारे टीनेजर्स है अंडर 16 इनके लिए स्मार्टफोन्स को बैन किया जाए और सोशल मीडिया से भी इनको बा किया जाए। तो ये जो आइडिया है इन्होंने फ्लोट किया है जबकि आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी ही एक रूल इन इफेक्ट है और लेकर आई गई है और इसके साथ साथ ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं अपने प्रपोजल को रखेंगे और पार्लियामेंट कुड पास अ लॉ जहाँ पर एक ऐसे फ़ोन को दिया जाए फॉर अंडर 16 यूजर्स जो बिल्कुल स्मार्ट ना हो। तो इसके बारे में आपकी भी कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियन या राय होगी जो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं 5599 पर। इसके साथ में थोड़ी देर में आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में भी बताएंगे कि ग्लोबली क्या हो रहा है।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
3: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: कैफे और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: जी हाँ, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम और मैं हूँ अभी आपके साथ में। आपको बता दूँ, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है और आपको मालूम भी होगा कि पिछले कई दिनों से कनाडा में वाइल्ड फायर्स लगी हुई हैं और यहाँ तक कि अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हमारे हाथ लगा है कि कुछ 800 वाइल्ड फायर्स अभी अक्रॉस कनाडा लगी हुई है और ये इतनी ज़्यादा तादाद में हो गई है। इसको लेकर एयर क्वालिटी लेवल्स भी जो अलर्ट से ये मल्टीपल यूएस स्टेट्स में भी दी जा रही है, यानी कि जो थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मोक है ये आपको अब डेट्रॉइट से लेकर टोरंटो से लेकर न्यूयॉर्क और अक्रॉस न्यू इंग्लैंड भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये जो स्मोक है थिक क्लाउड्स ब्लैंकेट का ये अब अक्रॉस फ्लोट हो रहा है, यानी कि यहाँ तक कि यूएस में काफ़ी स्टेट्स में भी दिक्कतें पैदा कर रही है। तो ये सभी कुछ है और साथ में ओंटारियो में रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है, जबकि वहाँ पर इतनी बुरे तरीके से आग लगी है कि काफ़ी कुछ जलकर राख हो गया है। तो ये जो न्यूज़ है ये कनाडा में कनाडा से है, अक्रॉस बीबीसी इसको बताया गया है। तो अगर जो आपके भी कुछ फैमिलीज या फ्रेंड्स कनाडा में रहते हैं तो आप भी उनसे चेकआउट कर सकते हैं कि अभी वो कैसे हैं, या फिर जो स्टेट में वो है, जो प्रोविंस में वो है, क्या वो अभी सेफ है या नहीं।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: आपकी फेवरेट डाल हम पर, यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, अभी का साथ है। और आपको बता दूं कि सुबह को एम्ब्रेस करने के लिए, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एम्ब्रेस करने के लिए आपको रात को पीछे छोड़ना पड़ता है। जी हां, आपको रात को पीछे छोड़ना पड़ता है, तभी एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग को आप एम्ब्रेस कर सकते हैं। इसी तरह लाइफ में भी कुछ अच्छा अपनाने के लिए जो बीती बातें हैं उन्हें पीछे छोड़नी पड़ती है।

0: हम पर अभी का साथ है और इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। 20 मिनट बाकी है 7 बजने में, ऐसे सुबह सुबह आपका साथ बिल्कुल ज़रूरी है। और आप भी अगर जो अपने पहले मॉर्निंग टी का मज़ा ले रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ और इसी तरह से आपका साथ देता रहूँगा। यह है 104.2 FM साथ में रोवा पर सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hump.
3: 80s ke retro gaane.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली, बस मेरा फोकस है.
9: हाँ, अच्छा
8: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: On the airwaves of हम मैं हूँ आपका साथी अवि और ये है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो. आपको बता दूं जबकि आज है 18 तारीख जुलाई तो ऐसे में आज आपके पास में मौका है द ग्रेट कॉमेडी नाइट देखने के लिए. जी हाँ, आज ये धमाकेदार शो होने वाला है. अगर जो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर को लाइव देखने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कल जबकि इनका मीट और ग्रीट था और ऐसे में इनसे मुलाकात हुई और काफ़ी लुक फोर्ड ये कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए. और जो इनकी वाइब होती है ना, कॉमेडी की टाइमिंग होती है, जो वाइब होती है, ये बिल्कुल आपको आज एंटरटेन करने वाले हैं. तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है जबकि विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में इनका जो शो है ये होने को है. बुक माई इवेंट डॉट को डॉट इन जेड पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं जबकि कुछ गिने चुने टिकट्स ही बाकी है. जबकि मैं आज चेकआउट कर रहा था तो कुछ लिमिटेड सीट्स ही बाकी है. ऐसे में आप को होना चाहिए वहाँ और एंटरटेन करने के लिए खुद को और जो इनके हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंसेस है ये देखने के लिए. तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है. बुक माई इवेंट डॉट को डॉट इन जेड पर जाकर ज़रूर टिकट लीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसी नाइट रहेगी जिसे आप चेरिश करेंगे और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल इन्जॉय करेंगे. तो ट्राई विजन लेकर आए हैं इनको और ये सभी कुछ आपके पास में मौका है आज इनको देखने के लिए.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Yo, main hoon chhota sa chhora.
2: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, मैं हूँ अवि, आपके साथ में लेकर आया हूँ सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो। और जबकि 7:01 हो चुका है, ऐसे में अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपकी भी सुबह अभी अभी हुई है, तो वेलकम टू द शो। जबकि सैटरडे 18 जुलाई का ये सफ़र है, अवि का साथ है प्यारा सा। और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में आपके साथ में अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे कि क्या कुछ आपके आसपास हो रहा है। लेकिन 8 पर आपके लिए सुबह का पहला समाचार रहेगा, इसका भी इंतज़ार करिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके आसपास या फिर करंट अफेयर्स में क्या कुछ हो रहा है, न्यूज़ में क्या कुछ सुर्खियां बनी हुई है, ये सभी जानने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि आपके कम्युनिटी में, आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, आज के दिन के लिए आप क्या कुछ प्लान्स बना सकते हैं। ऑल ऑफ दिस विद मी। लेकिन अभी के लिए जो सफ़रनामा है, ये लकी अली के साथ में शुरुआत करते हैं इस फ्रेश आवर की।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम. मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपको बता दूं कि आपके आसपास क्या कुछ करने का मौका है, जबकि आप भी सोच रहे होंगे कि इस वीकेंड को कैसे बिताएं. तो सबसे पहला पहल हमने आपको बताया कि आज रात को जबकि राजीव ठाकुर साथ में कृष्ण अभिषेक का शो होने को है, इसके लिए भी आप टिकट्स ले सकते हैं. इसके अलावा आज दिन में 1 से लेकर 2 बजे तक आपके पास में मौका है काई कल्चर एंड कनेक्शन में शामिल होने के लिए, यानी कि फूड कल्चर एंड कनेक्शन, एक ऐसा मौका जहां पर आप जाकर, जबकि मातृकी को अभी भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो एक शेयर्ड स्टोरी साथ में कनेक्शन करने का, बनाने का मौका आपके पास में रहेगा. आपको सिर्फ जाना होगा ग्लेन इनिस लाइब्रेरी जो है 108 लाइन रोड ग्लेन इनिस ओकलैंड में, और ये आज 1 PM से 2 PM तक रहेगा. कॉस्ट बिल्कुल फ्री है. एक ऐसा रिलैक्स्ड वेलकमिंग इवेंट जहां पर आप अपने बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं, पूरी की पूरी फैमिली जा सकती है, कोई बुकिंग रिक्वायर्ड नहीं है. और यहां पर ब्रिंग अ प्लेट भी है ताकि ये जो कनेक्शन है और इवेंटफुल रहे. तो काई कल्चर एंड कनेक्शन एट ग्लेन इनिस लाइब्रेरी 108 लाइन रोड ग्लेन इनिस में रहेगी 1 PM से लेकर 2 PM तक, जहाँ पर आप जा सकते हैं. इसके अलावा सेलेस्टियल मातरिकी मार्केट ये भी जारी है एलन मेलविल सेंटर 2 फ्रेबर्ग प्लेस ओकलैंड सिटी सेंटर में. ये रहेगा आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक और यहाँ पर भी बिल्कुल फ्री एंट्री है. और इस मातरिकी अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक वार्म वाइब्रेंट फानो फ्रेंडली इंडोर एक्सपीरियंस के लिए, अगर जो आपको पेंटिंग में रुचि है, आपको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर एक मौरी आर्टवर्क का भी डिस्प्ले किया जाएगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं. साथ में लाइव डीजे सेट्स और चिल आउट जोन्स भी रहेंगे, बिल्कुल फ्री क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो एक ऐसा मौका जहाँ पर आप डिफरेंट कम्युनिटीज से मिल सकते हैं और अपना जो इंटरेक्शन है ये कर सकते हैं. तो एलन मेलविल सेंटर एट 2 फ्रेबर्ग प्लेस ओकलैंड सिटी सेंटर में है और यहां पर आज 12 PM से लेकर 4 PM तक यह मौका आपको दिया जाएगा. और जानकारी के लिए आप लीला भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0272884316 पर. इसके अलावा और भी बातें हैं, क्या कुछ आपके कम्युनिटी में आने वाले दिनों में हो रहा है, इसके बारे में आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे.

0: हम पर आप सुन रहे हैं सचेत टंडन को और यह है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो, जबकि 7:20 हो रहे हैं। अभी ही आपने रेडियो ट्यून इन किया है तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपका खास स्वागत करते हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। अभी का साथ है, आपको बता दें कम्युनिटी न्यूज में न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इन्वाइट कर रहा है टू द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट। आप भी कैरम बोर्ड खेलना पसंद करते हैं तो खास आपके लिए 22nd और 23rd अगस्त को बेकनहेड स्काउट्स हॉल में आपके लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको इनकरेज किया जा रहा है, कोई भी स्किल लेवल के आप हो, आप आकर पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक पेज पर या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को आप 02109085067 पर 02109085067 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट ये 22nd और 23rd अगस्त को रहेगा।
1: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide, half price, at Briscoe's Half Price Sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
5: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
6: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
10: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
2: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast on Hum.
0: यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम, मैं हूँ अभी आपके साथ में। आप भी अपने पहले कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं, जो कॉफ़ी की सुबह सुबह जो अरोमा होती है इसकी बात ही कुछ अलग होती है। और इसके साथ में मैं हूँ आपके साथ में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, और जो हमारे मैजिक नंबर है 5599 सुबह से 6 बजे से आपको गुड मॉर्निंग विश करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इस नंबर पर 5599 पर अपना जो प्यारा सा गुड मॉर्निंग का मैसेज है ये हमारे पास में भेजना है, इसको हम बिल्कुल लुक फॉरवर्ड करते हैं, ताकि हमें भी पता चले भाई आप भी हमारा साथ दे रहे हो और आपको हमारा साथ प्यारा लग रहा है, जो आप सुन रहे हैं आपको पसंद आ रहा है। याद रहे 5599 पर आप अपना जो मैसेज है गुड मॉर्निंग का सुबह सुबह हमारे पास में भेज सकते हो।

हम पर आप सुन रहे थे शाश्वत सिंह और साथ में जोनी थे को, और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस आने लगे हैं। सबसे पहला पहल रोनल, आपने अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल मैसेज भेजा है। गुड मॉर्निंग अभी भाई फ्रॉम VTNZ टीम बोटनी एंड ग्लेन इनस, हैव अ वंडरफुल डे अहेड ब्रो। थैंक यू सो मच रोनल, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम को, प्रोग्राम में इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा। और भी प्यारे मैसेजेस हैं जहाँ पर रियाज ने भेजा है सुबह सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग वोक अप टू द ट्यून्स ऑफ हम। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आप भी हमें सुन रहे हैं 5599 पर, आपका जो प्यारा सा गुड मॉर्निंग का मैसेज है आप भेज सकते हैं, हमें इंतजार है। 5599 इज द मैजिक नंबर, यहां पर आप अपने जो मैसेजेस है ड्रॉप कर सकते हैं। और आज कुछ स्पेशल सेलिब्रेट भी आप कर रहे हैं, 18th of July है, आपकी फैमिली में किसी की जन्मदिन है या फिर कोई चाहने वाले हैं जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इसकी खुशियां भी आप हमारे साथ में बांट सकते हैं। अपना जो संदेश है, मैसेज है, ये भी 5599 पर आप भेजिएगा जरूर।

0: हम पर 20 मिनट बाकी है सुबह के 8 बजने में, और ऐसे में आपको बता दें, अगर जो आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो शायद इस न्यूज़ से आप रिलेट कर पाएं। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटिंग ग्रेट गैरी सोबर्स, जिन्होंने अपने टाइम पर, अपने समय पर वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट इनिंग्स ऑफ 365 रन को किए थे विदाउट बींग आउट, और ये एक 21-year-old रिकॉर्ड इन्होंने उस उम्र पर सेट किया था। और इसके अलावा इन्होंने एक समय पर एक ओवर पर 6 sixes मारे थे। अब इनकी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 89। ही इज़ नो लॉन्गर विद अस। और वेस्ट इंडीज़ के एक बहुत ही उच्च कोटि के खिलाड़ी थे और काफ़ी रिस्पेक्टेड थे। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटिंग टीम ने, एसोसिएशन ने ये न्यूज़ रिलीज़ की है कि इनकी डेथ हुई है फ्राइडे को, और इनका गुजरने की जो रीज़न है ये नहीं डिस्क्लोज की गई। तो स्टोरी ऑफ क्रिकेटिंग में कहा जाता है कि ढेर सारे ऐसे ग्रेट प्लेयर्स हैं और ढेर सारे ऐसे चैम्पियंस से, और फिर कुछ ऐसे रेयर इंडिविजुअल्स हैं जो कहीं ना कहीं क्रिकेट के ग्रेटनेस को और भी ऊंचाई तक ले जाते थे। इनमें एक थे गैरी सोबर्स।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स,
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
1: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: Dia.
1: Streaming on Rover.
2: Get one free Disney Ooshie with every $30 you spend at Woolworths. Plus, receive a bonus Ooshie when you buy participating 1NZ products in a $30 shop. TCs and exclusions apply. While stocks last.
3: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down. And still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
4: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
5: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements, or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
6: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Toast, coffee, or humka energy. Saturday breakfast on Hum.
9: यस ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम और 15 मिनट बाकी है 8 बजने में 8 पर आपके लिए समाचार भी रहेंगे अभी के लिए आपको बॉलीवुड की दुनिया से जो नवीनतम जानकारी है ये बतला देते हैं एक्टर राजेश शर्मा आपने सुना होगा कि पिछले दिनों ये काफ़ी बीमार हो गए थे इनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था जबकि प्रभास तारा फौजी के सेट पर इनको एक इंसेक्ट बाइट हुआ था जिसके कारण ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंस चुके थे अभी ये रिपोर्ट सामने आई है कि ये काफ़ी ठीक हो गए हैं और इनको डिस्चार्ज किया गया है अब ये अपने घर पर और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और ऐसी आशाएं व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये और भी काफ़ी ठीक और भले हो जाएंगे तो राजेश शर्मा एक ऐसे कलाकार जिन्हें आपने काफ़ी फिल्मों में देखा है और भूल भुलैया में भी थे और साथ में अन्य कई फिल्मों में स्पेशल 26 में भी ये थे काफ़ी अच्छा काम करते हैं अभिनय करते हैं तो ये आप काफ़ी ठीक हो चुके हैं और वापस अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं ऐसे में याद रहे 104.2 FM साथ में रोवा पर अभी का साथ है आपके मैसेजेस आने बाकी हैं 5599 पर थोड़ा सा अपने उंगलियों को तकलीफ दीजिए एक प्यारा सा मैसेज भेजिए सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाएगी और भी जब भी हमारे पास में आपका प्यारा सा मैसेज आएगा

आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. आपका मैसेज मिला, आपने लिखा है कि लिसनिंग टू योर शो ब्रदर एंड लविंग इट. ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा, 12 तक हम आपके साथ में रहेंगे. और यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन योर फेवरेट डायल हम 104.2 एफएम साथ में रोवा पर. अब 8 बजे आपके लिए समाचार रहेंगी और उसके बाद में और भी बातें आपके साथ में रहेंगी.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
2: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: यो मैं हूँ सुता सा छोरा
0: You're listening to Avineet.
2: आप भी सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो का मजा ले रहे हैं और साथ ही साथ में आप अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको शामिल करते हैं ऑन दी एयर वेव्स ऑफ हम. मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि 8:03 हो रहे हैं. ऐसे में अभी से लेकर 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. आप हमें सुनते आ रहे हैं रोवा पर, साथ में 104.2 FM पर. एक और एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप हमारे साथ में कनेक्टेड हो सकते हैं, 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं. और आज सुबह सुबह हमने एक पोस्ट यहाँ पर अपलोड किया है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं. पोस्ट की समरी कुछ ऐसी है कि एक छोटी सी चाबी जो है एक अपने से मजबूत ताले को खोल सकती है. छोटी सी चाबी जो है अपने से बड़े और मजबूत ताले को खोल सकती है. ऐसे कौन सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं जो आपके लिए और सारे अपॉर्चुनिटीज़ या जो आपके काम रुके हुए ये खोल सकती है. इसको देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर ज़रूर जाइए और अपना प्यारा सा कमेंट वहाँ पर लिखिएगा. और इसके अलावा आपको बता दें 18 जुलाई है, आपका कुछ सेलिब्रेशंस आपका आज है जिसमें शामिल है. आप अगर जो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका जो इसकी जो खुशियां आप हमारे साथ में बांटना चाहते हैं, तो 5599 पर अपना जो मैसेज है ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा और यहाँ से आपको शामिल करते चलेंगे.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: यह सरल ब्रेकफास्ट शो और अभी थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे एक आइडियल ब्रेकफास्ट जो आपके लिए बिल्कुल यू कहें हेल्थी है. तो इसका जो बारे में रेसिपी है या फिर कैसे आप इसको बहुत जल्द से प्रिपेयर कर सकते हैं बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे और इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं एंड यू कैन लेट मी नो कि आपको पसंद आया या नहीं. लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है इसके बारे में भी जो बातें हैं आपके साथ में करेंगे बस थोड़ी देर में.

0: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का ये कारवा जारी है, जबकि 8:16 हो चुके हैं। तो हमने कहा था कि आपको बताएंगे हार्ट हेल्थी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, तो आपको इतना ही करना होगा अगर जो आप चाहते हैं टू स्टार्ट योर डे विद अ बैंग ऑन अ लवली सैटरडे मॉर्निंग, तो एग्स विद एवोकाडो एंड टोमेटो ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको एग्स लग सकते हैं 2 eggs तक पर सर्विंग और साथ में एवोकाडो हाफ, और इसके अलावा 3 to 4 चेरी टोमेटोज भी आप ले सकते हैं स्लाइस्ड। और आपको सिर्फ क्या करना है, एग्स को अपने प्रेफरेंस के मुताबिक बनाने हैं, बॉइल्ड या स्क्रैम्बल या पोस्ट या फ्राइड, जैसा आप पसंद करते हैं। उसके अलावा आप बिल्कुल एवोकाडो को स्लाइस कर लीजिए टोमेटोज के साथ में और अपने प्लेट में से सजा लीजिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आपके जब एग्स प्रिपेयर हो जाए तो आप इस पर सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, स्पिनच या मशरूम हुआ, ये सभी कुछ आप अपने प्लेट पे सजा सकते हैं टू एंजॉय योर न्यूट्रिएन पैक्ड ब्रेकफास्ट। और ये आपके लिए क्यों हार्ट हेल्थी है, एग्स को बताया गया है इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, साथ में एसेंशियल विटामिंस की ये पूरी की पूरी पैकेज है। इसके साथ साथ जो एवोकाडोज होते हैं ये हेल्थी मोनोसेचुरेटेड फैट्स आपके लिए प्रदान करता है, जिससे बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं। और टोमेटोज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। तो ये इतना ही करके आप सैटरडे मॉर्निंग को एक हेल्थी ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 9 पर आपके लिए रहेगा मस्ती मीठा, इसका भी हमको इंतज़ार है। प्रोग्राम का मुख्य रुख थोड़ा सा बदलेंगे और अभी के लिए आपका साथ दे रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग
1: Gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सभी आते हैं।
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Māori Mā, have you received a reminder email or text about your role for this year's election or not sure you're enrolled? Luckily, we still have time. If you're Māori and 18 or over, you get to choose Māori role or general role. There's no right or wrong, just right for you. The role you choose affects who you can vote for to represent you and your roe in Parliament. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
5: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
6: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
5: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
6: Mashallah, bahut acha, very nice.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
9: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
10: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
11: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
10: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
11: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
10: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
11: 100% authentic and pure as mother's love.
12: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at Avara. avana.co.nz.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सरल ब्रेकफास्ट शो ऑन हम, मैं हूं अभी आपके साथ में। अब कुछ अलग करते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं सरडे मॉर्निंग ब्रेन टीजा। सुबह सुबह आपसे पूछेंगे, हाँ कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है जिसको आंसर करने में शायद आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये हमारे न्यूजीलैंड से ही लेना देना है। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, आपको हमको ये बताना होगा कि न्यूजीलैंड की ऐसी कौन सी टाउन है जिसे क्लेसीफाई किया गया है द कुमरा कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। जी हाँ, कुमरा, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, या फिर फिजियन लैंग्वेज में इसे हम कुमाला भी कहते हैं। तो कुमरा जो स्वीट पोटैटो है, ऐसी कौन सी टाउन है न्यूजीलैंड में जिसे क्लेसिफाई किया गया है द कुमरा कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। इतना ही सवाल का आपको जवाब देना है। 5599 पर जरूर भेजिएगा, द कुमरा कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, ऐसा कौन सा टाउन है जिसे बुलाया गया है। 5599 पर अपने नाम के साथ में अपने जवाब हमारे पास में सेंड कीजिएगा। अभी

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और जो सवाल हमने आपसे किया है किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया जो सवाल हमारा ठहरा है कि न्यूजीलैंड का ऐसा कौन सा टाउन है शहर है जिसे रेफर किया जाता है एज द कुमरा कैपिटल आपने काफ़ी टाइम इस टाउन से होकर गुजरे होंगे नॉर्थ आइलैंड में या फिर इसको पास किया होगा कुमरा यानी कि स्वीट पोटैटो या फिर कुमाला भी इसे फिजी में कहते हैं तो ऐसे कौन सा शहर है जिसे दी कुमरा कैपिटल रेफर किया जाता है न्यूजीलैंड में आपको यही अंदाज़ा लगाना था उस टाउन का नाम हमें भेजिएगा द कुमरा कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड और इसके बारे में और भी बातें करेंगे लेकिन इन द मीन टाइम आपके जवाब का इंतज़ार है

हम पर आपके साथ में कुछ ऐसी बातें भी करते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपको यूं कहें कि आपको इनलाइटन करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेटिव हमारा शो भी रहता है। और काफ़ी जवाब आए हैं, सलेश ने अपना जवाब भेजा, इसके साथ में क्वीन आपने भी अपना जवाब भेजा है, थैंक यू सो मच। किरण आपका भी मैसेज आया है, नीलेश आपने भी जवाब भेजा, आप सभी ने सही पहचाना जिस टाउन के बारे में हम बात कर रहे थे, द कुमरा कैपिटल जिसे रेफा किया गया है एज द कुमरा कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, ये है डागाविल। जी हाँ, डागाविल एक ऐसा स्मॉल फार्मिंग टाउन है जो लगभग यूं कहें 2 hours नॉर्थ ऑफ ओकलैंड है और सिर्फ 10 minutes फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट। और ये जो टाउन है ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न वायरोआ रिवा के पास में ही, और टिपिकली क्वाइट फ्लैट लैंड यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दें कि क्यों इसको रेफ़र किया गया है एज द कुमरा कैपिटल। जब भी आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो स्वीट पोटैटोज़ यानी कि कुमरा लेने के लिए, 95% ऑफ कुमरा जो आपको सुपरमार्केट में मिलती है ये डागाविल से ही आती है, तो इसीलिए इसको रेफ़र किया गया है एज द कुमरा कैपिटल। अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए न्यूजीलैंड के बारे में, ताकि हमें और भी पता चले कि ऐसी कौन कौन सी खास बात है जहां न्यूजीलैंड की अलग एक चाम होती है। सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये, अभी का साथ है, मेरा प्यार आप तक पहुंचे, अभी ही आपने ट्यून इन किया है, वेलकम टू द शो। और 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा, 9 से जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इसका रुख थोड़ा सा बदलेगा, जबकि मस्ती मीठा लेकर आएंगे आपके लिए।

0: हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में उदित नारायण और साथ में लता मंगेशकर का एक मेलोडियस अंदाज. और आपको बता दें कि कम्युनिटी न्यूज़ में श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में जो है ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आयोजित कर रहे हैं अखंड रामायण पाठ की, जिसके लिए आप जा सकते हैं टू 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन ऑन दी 1st of August, साथ में 2nd of August को, जबकि 1st को सैटरडे सुबह सुबह 7 बजे रोड पूजा के साथ में ये आरम्भ होगी. उसके बाद में 10 बजे से 8:45 से राधा रामायण पाठ जो है ये शुरुआत होगी, और संडे 10 बजे सुबह तक ये जो अखंड रामायण पाठ है ये चलती रहेगी. उसके बाद में हवन और आरती रहेगी, महाप्रसाद आपको दिया जाएगा दिन भर प्रोग्राम के दौरान. और इसके साथ में और भी जानकारी के लिए 09836-4647 पर आप कॉल कर सकते हैं. 104.2 FM साथ में रोवा पर अभी के साथ है.
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी Saturday breakfast on Hum.
2: Driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
8: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
10: Got an event on the calendar? Then your signage should already be in motion. Speedy Signs produces pull-up banners, display walls, teardrop flags, and expo signage that grabs attention fast. They handle design, production, and install, so you can focus on conversations and conversions. Big presence, zero last-minute panic. If your event is coming up, now's the time. Don't leave it to the last minute. Call them now on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz.
11: Big Points Blitz is back. Get big bonus points at Woolworths, Fresh Choice, Gas and Milk Run with Everyday Rewards. Boost the offers in your Everyday Rewards app, shop and collect up to $15 worth of vouchers. Offer ends 19th of July. T's and C's apply.
12: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
13: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
14: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
15: Join our tribe!
14: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
15: join our tribe!
1: The beat of Bollywood.
16: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Hum. Saturday breakfast on Hum.
0: हम पर रवि के साथ आप सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो का मज़ा ले रहे हैं. कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो जब भी सुर मिलाते हैं, इनकी आवाज़ आपके दिल में एक अलग जगह बना लेती है। ऐसे ही एक है राहत फतेह अली खान, जो ओकलैंड आ रहे हैं अपने कॉन्सर्ट को लेकर, और इनको प्रेजेंट कर रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शन, साथ में गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन। टिकट्स के लिए, जी हाँ, टिकट्स के लिए आप dryticketscom जा सकते हैं, जबकि इनकी जो इवनिंग रहेगी ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस, ये रहेगी 25th ऑफ जुलाई को, यानी कि अगले शनिवार को आप इनको देख सकते हैं बिल्कुल लाइव एट द ट्रस्ट अरीना ऑकलैंड में। ये परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो इनका जो टिकट्स है आप जाकर dryticketscom से ले सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी अनफॉरगेटेबल इवनिंग रहेगी जहां पर राहत फतेह अली खान को आप सुनेंगे, ये प्रेजेंट करेंगे आपके लिए अपनी आवाज़ में कुछ टाइमलेस क्लासिक्स, साथ में कुछ कवालियों को ये पेश करेंगे, इसके साथ साथ जो सूफी ये गाते हैं ये भी आप सुन सकते हैं ऑन द 25th ऑफ जुलाई एट दी ट्रस्ट अरीना इन ऑकलैंड। इतना हसीन मौका आपको फिर पता नहीं कब मिले, तो dryticketscom से आप जो टिकट्स है ये ज़रूर ले लीजिएगा।

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम Breakfast show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Saturday breakfast on Hum. Masti meter on Hum.
1: Yo,
0: you're listening to Avineet.
2: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में और स्टूडियोज में हमारे ठीक 9 बज रहे हैं। ऐसे में वी आर हाफ वे थ्रू द शो, तो अब लेकर आए हैं आपके लिए मस्ती मीठा। ये जो मोड़ है मस्ती मीठा के साथ में है, क्योंकि पूरे वीक के भाग दौड़ के बाद में, कामकाज के बाद में वीकेंड आता है और यहाँ पर इंजॉय करना तो बनता है, क्यों ना हंसे साथ मिलकर। तो ये मस्ती मीठा का यही मोटिव होता है कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करें, कुछ सुनाएं अलग। और ये सभी कुछ के साथ में इस आवर की शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपके लिए एक और एक फन क्विज लेकर आएंगे, लेकिन अभी के लिए अरमान मलिक को सुनते हैं एंड उन्हीं के साथ में इस आवर की शुरुआत

0: हम पर मस्ती मीठा में फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी, और मस्ती मीठा मतलब यानी कि हंसने हंसाने का माहौल है, और साइंस कहती है कि हंसने के काफ़ी फायदे हैं। कुछ लोग हैं जो दिल खोलकर नहीं हंसते, तो आपके लिए दिल खोलकर हंसिए, क्योंकि आपके हंसने से आपके जो हार्ट हेल्थ है ये इम्प्रूव होती है। लाफिंग रेजेस योर हार्ट रेट और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करती है, और इसके साथ में आपके ब्लड प्रेशर को भी लो कर सकती है। इसके साथ साथ में बूस्ट इम्यूनिटी, ये सभी कुछ है, और रिलीव्स पेन, और साथ ही साथ में आपका एक मूड माहौल बिल्कुल अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है हंसने हंसाने की, जब भी आप हंसते हो मुस्कुराते हो, आपके हंसी को देखकर सामने वाला भी हंस देता है, बिल्कुल कॉन्टेजियस है। तो चलो आपको कुछ सुनवाते हैं, और इसके साथ में आपको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना है 5599 पर कि किस कलाकार की आवाज़ को हम सुनवा रहे हैं आपको। छोटा सा एक स्किट है, इसे सुनकर भी आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, हंसेंगे। तो आपको सुनवाते हैं, आपको सिर्फ 5599 पर अपने नाम के साथ में ये अंदाज़ा लगाना है कि किस कलाकार की आवाज़ है। ये भी कॉमेडी की दुनिया में काफ़ी माने जाने हैं।
1: जब ये आया था ना मुंबई में मेरे पास, तो इसकी मेरे का जेब में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया होगा, और आज भगवान की कृपा से 4.5 करोड़ का कर्जा है इसके। क्योंकि दिखावा जो करेगा उसका तो काम खराब होना ही है ना, तो दिखावा बिल्कुल नहीं करना, अभी भी दिखावा मत कर, इधर हो जा मुझे बात करने। जब ये आया था ना मुंबई में मेरे पास, तो इसकी मेरे का जेब में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया होगा, और आज भगवान की कृपा से 4.5 करोड़ का कर्जा है इसके।
0: तो ये एक ऐसे कलाकार है जो आपको अक्सर स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर या फिर छोटे स्क्रीन पर आकर हंसाते रहते हैं, और इनकी एक जोड़ी बनी है एक ऐसे कलाकार के साथ में जो अभी ओकलैंड का टूर कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, फिगर आउट करना है कि किस एक्टर की आवाज़ में जो कॉमेडी में बिल्कुल माहिर है, ये स्किट आपको सुनवा रहे थे। 5599 पर अपना जवाब आप ज़रूर भेजिए, और अगला जो गाना है उदित नारायण की आवाज़ में, ये इन्जॉय कीजिएगा।

0: हम पर वीकेंड का समय है तो हैप्पी हैप्पी होना ही चाहिए, और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अवी का साथ है। और जबकि हमने आपको एक स्किट एक सुनवाया था रेडियो पर, एक कॉमेडियन की, एक ऐसे एक्टर की जो कॉमेडी में काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन एक ही जवाब आया, एक ही पर्सन ने अटेम्प्ट किया है, हिमांशु का ही जवाब आया है। तो चलो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं और इसे सुनिएगा, और 5599 पर हमारे पास में अपने जो जवाब है भेजिएगा, ताकि पता तो लगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद आ रहा है या फिर जो एक्टर की आवाज़ है ये आपको समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं, इसे सुनिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा। आपने इसको कई बार, इस एक्टर को बिग स्क्रीन पर भी देखा है, जय हो में ये थे एक पंडित की भूमिका में, और इसके साथ में रेडी में भी ये नज़र आए थे सलमान खान के साथ में। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं ये स्किट, आप सुनिए इसे और इस कलाकार को पहचानिए।
1: जब ये आया था ना मुंबई में मेरे पास, तो इसकी मेरे को जेब में ज्यादा ज्यादा 1500 रुपया होगा, और आज भगवान की कृपा से 4.5 करोड़ का कर्जा है इसके। क्योंकि दिखावा जो करेगा उसका तो काम खराब होना ही है ना।
0: हाँ, तो बस यही आपको पहचानना है कि किस कलाकार की आवाज़ है जो अपने मैनेजर के बारे में बता रहे थे कि जब मुंबई ये आए तो कुछ पैसे थे तो थे इनके पास में, लेकिन इनसे मिलने के बाद में इन पर कर्जा चढ़ गया। इसी एक्टर की आवाज़ को आपको पहचान कर हमारे पास में भेजना है, और भी बातें होती रहेंगी आपके साथ में, जबकि ये है मस्ती मीठा। 5599 पर मैसेज कीजिए।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
2: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
3: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
4: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
3: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
4: Mashallah, bahut acha, very nice.
2: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: अच्छा?
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह का।
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अभी का साथ है और 12 तक आपका साथ देते रहेंगे लेकिन इस कलाकार का नाम हमें चाहिए 5599 पर
2: जब ये आया था ना मुंबई में मेरे पास तो इसकी मेरे का जेब में ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपया होगा और आज भगवान की कृपा से 4.5 करोड़ का कर्जा है इसके क्योंकि दिखावा जो करेगा उसका तो काम खराब होना ही है ना तो दिखावा बिल्कुल नहीं करना अभी भी दिखावा मत कर इधर
1: तो ये कलाकार है और आपको अगर जो पता लगता है 5599 पर जरूर मैसेज कीजिएगा लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है जो दिखावा करता है उसका काम गड़बड़ ही होता है तो अगर जो आपको पता हो इनके जोड़ीदार जिनके साथ ये अक्सर शो किया करते हैं ये अभी ओकलैंड में है और इनका शो आज आप रात को देख सकेंगे जबकि ट्राईविजन आपके लिए लेकर आए हैं कृष्णा को और साथ में राजीव ठाकुर को और आप इनको कैच कर सकते हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट में जहां पर आज रात को ये परफॉर्म करने वाले हैं जबकि मैंने लास्ट चेक किया है तो कुछ टिकट्स कुछ गिने चुने टिकट्स ही बाकी रह गए हैं आप जाकर इन्हें ले सकते हैं bookmyevent.co.nz पर इसके अलावा अगर जो आपको थोड़ी सहूलियत के लिए आपके लिए आफ्टर पे का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो आप टिकट्स ले सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसे भर भी सकते हैं और अगर जो बुकिंग करने में कोई आपको तकलीफ हो रही है तो 0210432720 0210432720 पर आप कॉल करें और यहां से आपको असिस्टेंस मिलेगा अपने टिकट बुक करने के लिए बिल्कुल एक फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट जहां पर द ग्रेट कॉमेडी नाइट जिसे आप तक लेकर आ रहे हैं ट्राईविजन एंटरटेनमेंट और यहां पर आप ऐसे दो कलाकारों को देख सकते हैं जिन्होंने टाइम एंड अगेन सिल्वर स्क्रीन पर छोटे स्क्रीन पर अपना मैजिक क्रिएट किया है लेकिन आज लाइव देखने का मौका है कृष्णा अभिषेक साथ में राजीव ठाकुर विल टेक द सिटी बाय स्टॉर्म टुनाइट याद रहे bookmyevent.co.nz पर आप टिकट्स ले सकते हैं और इसके अलावा जो हमने आवाज़ आपको सुनाई थी और हमने कहा था कि ये अक्सर परफॉर्म करते हैं कृष्णा के साथ में तो एक बार फिर चलो फॉर द फाइनल टाइम आपको सुनवा देते हैं शायद आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये कौन कलाकार है
2: जब ये आया था ना मुंबई में मेरे पास तो इसकी मेरे का जेब में ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपया होगा और आज भगवान की कृपा से 4.5 करोड़ का कर्जा है इसके क्योंकि
1: ये भी एक बात है ना कि कभी कभी स्टार्ट करते हैं बिना कर्जे के लेकिन फिर कर्जा भी हो जाता है लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा ही पैसों को खींचता है तो अगर जो आप चाहते हैं किसी बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए जिसके बारे में हम आपसे 11 बजे पर बात करेंगे लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि लोग कहते हैं बिजनेस वेंचर के लिए अक्सर एक लोन से ही स्टार्ट करना होता है लेकिन इन द मीन टाइम आपको इस कलाकार जिसका हमने आपको स्किट सुनवाया है उसको पहचान कर उसका नाम हमको 5599 पर मैसेज करना है

हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में 27 अवे फ्रॉम 10 और 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। जो स्किट हम आपको सुनवा रहे थे, ये जो कलाकार है, इनकी जन्म हुई 27 अक्टूबर 1968 में इन जलंधर, पंजाब, इंडिया। एक मिडिल क्लास फैमिली में इन्होंने जन्म लिया, जहां पर कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप्स इनको सामना करना पड़ा। इसके साथ में इसी हार्डशिप्स के कारण इनको स्कूल भी जल्द छोड़ना पड़ा और घर को चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अन्य तरीके के इन्होंने कई ढंग के काम किए हैं। कभी दुकान में काम किया, तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया, और फिर कभी अपने पिता की भी मदद इन्होंने की। लेकिन एक छोटे से उम्र में ही इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है कॉमेडी की ओर कर दिया था, अपने जो रुझान है कॉमेडी की ओर कर दिया था। और इसके साथ में लोकल कैरेक्टर्स को ये अक्सर इमिटेट किया करते थे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। इसके साथ साथ काफ़ी जगह पर ऐसे करते करते इन्होंने परफॉर्म किया लोकल थिएटर और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में, जहां पर इनके स्किट्स और स्टैंड अप कॉमेडी को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर इनको एक ब्रेक थ्रू मिला विद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जहां पर 2007 में इन्होंने थर्ड सीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। और ये जो पार्टिसिपेशन था इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी इनके करियर के लिए, जहां पर ये इमेज हुए एज वन ऑफ द मोस्ट सोट आफ्टर कॉमेडियंस। और इनके जो ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर है, जहां पर ये लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी पर बेसिस करते हैं अपने कॉमेडी स्किट्स को, ये लोगों के दिलों को जीतने लगे। जबकि मिडिल क्लास सेटिंग से ये आते थे, तो हार्डशिप्स को समझते थे और इसी एडवांटेज को लेकर ये कॉमेडी अपना जो प्रेजेंट है करते थे, ताकि लोग इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके। तो ये कोई और नहीं, ये है सुदेश लहरी। और काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। अविनाश, आपका भी जवाब आया, थैंक यू सो मच। रवि रॉयल ओक से आपने मैसेज किया था, सुदेश लहरी लिखकर आपने भेजा है। इसके अलावा राम सिंह, आपने भी सुदेश लहरी पहचाना था। आफरीन, आपका भी मैसेज आया। इसके साथ में हिमांशु, थैंक यू सो मच आप सभी को कि मस्ती मीठा में आपने सही कलाकार को पहचाना है, विच इज़ सुदेश लहरी। और इनके अक्सर जो जोड़ीदार होते हैं कृष्णा अभिषेक, ये आज ओकलैंड में परफॉर्म करने वाले हैं और इनको देखने का मौका आपके पास में है। जबकि द ग्रेट कॉमेडी नाइट ये रहेगा आज 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर, और bookmyevent.co.nz से आप टिकट्स ले सकते हैं। बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो।

0: That's right. We are simply Vavavoom और ये है आपके साथ में Saturday Breakfast Show on the 18th of July, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. Community News में एक और एक खबर हमारे हाथ लगी है जो आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं. काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, जबकि आपके लिए कीवी फिन साथ में इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट और मीडिया पार्टनर हम के साथ में आपके लिए लेकर आ रहे हैं द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री गुड ओवर इविल रामलीला. ये आपके लिए एक टाइमलेस स्टोरी, एक इटर्नल सेलिब्रेशन जहां पर रामलीला को प्रेजेंट करेगा किया जाएगा स्टेज पर आपके लिए ऑन द 8th of August, शनिवार को ये रहेगा 8th of August. अभी से ही डेट्स मार्क कर लीजिएगा. और रामलीला के जो प्रेयर्स है प्रोग्राम 5 PM से स्टार्ट होगी और साथ में रामलीला का जो परफॉर्मेंस है शाम को 6 बजे ये शुरुआत होगी इसकी. और वेन्यू है वैदिक सेंटर 32 Glasgow Avenue पपटोय में. और टिकट प्राइसेस कुछ है $10 पर पर्सन और चिल्ड्रन अंडर 5 ये फ्री एंट्री है इनके लिए. अगर जो आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं रामायण से तो एक बेहतरीन मौका जहां पर एक ड्रामा फॉर्म में आप इसे देख सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं. तो 8 अगस्त को ये प्रोग्राम रहेगा एट वैदिक सेंटर 32 Glasgow Avenue पपटोय. और साथ में जो टिकट प्राइजेस है $10 पर पर्सन और बच्चों यानी कि जो चिल्ड्रन अंडर 5 है इनके लिए बिल्कुल फ्री है. अगर जो आपको स्टॉल्स के लिए भी इंक्वायरीज करनी है, अगर जो आपको इस नाइट पर स्टॉल भी रखने हैं तो आप स्टॉल्स के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मास्टर अशोक को. आपको सिर्फ कॉल करना होगा मास्टर अशोक को 021-179-5459 पर.
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ. वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide, half price, at Briscoe's Half Price Sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
2: Head into Bunnings today and grab the Surf Professional 9kg laundry powder for just $39. Available in Sun Fresh and Rose Fresh. Don't miss this great value. Stock is limited. Shop online or in-store at your local Bunnings warehouse. Bunnings Warehouse.
3: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
4: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
5: Branchy Group 3 Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Ghadvi live in Auckland.
6: Hey, hello, bhai, hello, hello. Bhai, hello, hello.
5: Taiyar thai jao ek yaadgar saanj mate jyaan hashe music, masti and non-stop garba. Saturday night, 1st August, the Mahatma Gandhi Center. Raj Ghadvi sathe manao ek shandar garba night. Garba with Raj Ghadvi. Saturday night, 1st August, tickets mate jao eventstickets.co.nz.
7: Bollywood ka asli blockbuster.
8: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
7: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
9: जी हाँ, हम पर ये है मस्ती मीटा. मैं हूँ अभी आपके साथ में, और मस्ती के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपके साथ में करते रहते हैं. जबकि इट्स 14 अवे फ्रॉम 10, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं कि ट्रेन सर्विसेज कुछ ओकलैंड के अक्रॉस कैंसिल किए गए हैं, जबकि कुछ इमरजेंसी इंसिडेंट हुई है लगभग 9:15 के समय. ये अभी से आधा घंटा पहले ये जो रिपोर्ट है सामने आई है कि कुछ ट्रेन पैसेंजर्स को ये अगवा किया जाता है कि कुछ सिग्निफिकेंट डिलेज हो सकते हैं, जबकि एक इमरजेंसी सर्विस इंसिडेंट हुआ है वाइटेमाटा स्टेशन के आसपास. इसके कारण ओकलैंड के जो रेल नेटवर्क है कुछ यहाँ पर डिलेज कोज होंगे. आईटी ने कहा है कि जितने भी सदर्न एंड वेस्टर्न लाइन सर्विसेज है इनको कैंसिल किया गया है बिटवीन न्यू मार्केट एंड वाइटेमाटा, और साथ में ओनिहांगा लाइन सर्विसेज आर ऑल्सो कैंसिल बिटवीन पेनरोज एंड न्यू मार्केट. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अगर जो आप ट्रेन सर्विसेज यूज़ करने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपको कुछ डिलेज का सामना कर पड़ सकता है.

0: कैफे और हम का एनर्जी सुबह हो गई सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा म्यूजिक

0: मस्ती मीटर ऑन हम।
1: आज के लिए मस्ती मीटा में बस इतना ही था, और 10 पर आपके लिए नवीनतम लेटेस्ट न्यूज़ भी रहेंगी। हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और यह सैटरडे ब्रेकफास्ट शो।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: Yo, मैं हूँ सुता सा छोरा.
1: You're listening to Avineet.
3: स्टूडियोज में 10:02 हो रहे हैं. मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन द 18th of July. अभी अभी आपकी आंख खुली है. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आपका खास स्वागत करते हैं. वेलकम टू द शो. ऐसे में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और इसी आवा पर आपको बता दें कि आपके पास में मौका रहेगा डबल पास जीतने के लिए. जबकि इस आवा पर आपके लिए हम पेश करने वाले हैं करण औजला के गाने को ऑन एयर. और जैसे ही आप इस गाने को सुने, उस गाने का नाम यानी कि टाइटल अपने नाम के साथ में विद द कीवर्ड्स KA लिखकर आपको भेजना है हमारे पास में 5599 पर. जैसे ही आप भेजते हैं आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद में आपके हाथ लग सकते हैं डबल पास. याद रहे करण औजला आ रहे हैं अपने पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर को लेकर, जो परफॉर्म करने वाले हैं स्पार्क अरीना में ऑन द 25th of August. और यहां पर इनके साथ स्पेशल गेस्ट रहेंगे इकी, जो इनको स्टेज पर ज्वाइन करेंगे एंड द एटमोस्फियर विल बी इलेक्ट्रीफाइंग. तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है और जीतने के लिए. जबकि हम इसी आवा पर करण औजला का किसी एक गीत को बजाएंगे और उस टाइटल को आपको लिखकर 5599 पर विद द कीवर्ड्स के भेजना है. और जानकारी या टिकट्स के इन्फॉर्मेशन के लिए हम rova.nz या फिर livenation.co.nz जाकर चेकआउट कर सकते हैं. इस आवा की शुरुआत करते हैं अभी के लिए अरिजीत सिंह के आवाज में. और जबकि जुगाड़ जंक्शन है तो आपके लिए लाइफ हैक्स, आपके लाइफ को इजी बनाने वाली कुछ टिप्स जो है आपके साथ में शेयर करते रहेंगे.

पेपी नंबर फॉर सैटरडे मॉर्निंग। और ऐसे में कुछ लोगों ने मौके पर चौका मारा है, जिनमें शामिल है सोनाली, अंतरप्रीत और साथ में अजय। आपका मैसेज आ गया है और जबकि प्रमोशन रन कर रहे थे तो आपका जो जवाब है आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर दिया गया है। और हमारे साथ में एक और एक मैसेज आया है, प्यारा सा कोमल ने लिखा है, गुड मॉर्निंग अभी, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच कोमल इसके लिए, साथ साथ आपको भी आज का दिन आपके लिए बिल्कुल प्लेजेंट रहे और ये पूरा का पूरा वीकेंड आपके लिए अमेजिंग रहे। थोड़ी देर में आपकी जो बातें हैं करवाएंगे हम, जी हाँ, कशिका जी के साथ में, क्योंकि कशिका जो है ये रहेंगी नमस्ते इंडियन सुपर मार्केट जो कि वैराव वैली में है और यहाँ से कुछ अपडेट्स देने वाली है। इस पर भी जो जानकारी है कशिका जी हमारे साथ में थोड़ी देर में हो जाएंगी और लेकर आएंगी आपके लिए कुछ अमेजिंग अमेजिंग रिपोर्ट्स। इसके लिए भी ज़रूर हमारे साथ में रहिएगा।

0: ऑलराइट, हम पर मैं हूं अभी आपका साथी। और जबकि हमने आपसे कहा था कि आपकी बातें करवाएंगे कशिका जी के साथ में, और कशिश और कशिका जी की एक अलग जोड़ी बनी है आज, जबकि ये है वैराव वैली में कशिका जी हमारे साथ में हो गई है एक कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर। चलिए सुनते हैं कशिका जी से स्ट्रेट। हाय कशिका जी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड अवी, हाउ आर यू? भाई वाकई मैं यहाँ आप सबको नमस्ते करना चाहती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ एट कशिश, क्योंकि हाँ कशिश मैं नाम इसलिए ले रही हूँ, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फूड टेस्टिंग का काउंटर यहाँ पर लगा दिया है वायरो वैली में। एंड कशिश फूड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जो इस एरिया में अभी तक हम चाहते थे कि यहाँ कशिश फूड्स का भी नाम इतना ज्यादा हो, तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी फूड टेस्टिंग के लिए इन्होंने ऑन कर दिया है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ मोमोज, अब ये इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग मोमोज एंड बाउल्स जो हैं, दिस हैज बीन चोजन बाय द वर्ल्ड्स टॉप शेफ। तो ये आपको चीजी, स्पाइसी वेज, वेज पिज्जा, इस तरह के डिफरेंट बाउ बंस भी मिलने वाले हैं। मोमोज आर ऑल्सो गोइंग टू बी अमेजिंग। तो ये आप आके यहाँ पे गर्मा गर्म टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक खास चीज है कशिश के गुलाब जामुन में, पहली बात ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, स्वीट है एंड प्योर देसी घी में इनको बनाया गया है, तो इनका भी स्वाद आप यहाँ आके चख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि राइस पापड़, जीरा किचिया, गार्लिक किचिया, एक्स्ट्रा हॉट किचिया, ये भी आपके लिए फ्रेश एंड क्रंची एकदम तैयार है, तो इनको आके ट्राई कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भई आपको डिप्स चाहिए होती हैं, चटनी चाहिए होती है, तो मोमोज की चटनी, देसी चटनी और इसके साथ साथ यहाँ पर इमली की चटनी, ये भी टेस्ट करने के लिए लगा रखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तरह तरह के आइटम्स कशिश फूड्स के आपको मिल रहे हैं, और अगर आप यहाँ आके कशिश फूड्स की शॉपिंग करेंगे जहाँ बहुत सारे स्पेशल्स लगे हैं, तो लकी विनर्स विल गो इन टू द ड्रॉ टू विन सम ग्रोसरी हैम्पर्स। तो जल्दी करो, गड्डी घुमाओ, आ जाओ आज वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए, जहां आपको कोई भी कशिश का प्रोडक्ट मिलेगा या खरीदेंगे आप, तो आपको फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट 250 ग्राम्स का ये भी मिलने वाला है। तो किस बात का इंतजार है? हम FM से, मैं कशिका आपको वायरो वैली में नमस्ते कहने के लिए बेताब हूँ एट द कशिश, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड टेस्टिंग स्टैंड, टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियोज, दिस इज कशिका।
0: थैंक यू सो मच। तो ये थी कशिका हमारे साथ में, पूरा का पूरा मेला लगा हुआ है वैराव वैली में, क्योंकि यहाँ जाकर आप अमेजिंग सैम्पलिंग कर सकते हैं कशिश फूड्स ने जो ऑर्गेनाइज किया है फूड टेस्टिंग वेरियस प्रोडक्ट्स का, और कशिका जी भी रहेंगी। तो नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट एट 110 वैराव रोड इन वैराव वैली, यहाँ पर आप जा सकते हैं और हमारे साथ ही कशिका जी से भी मुलाकात कर सकते हैं।

0: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
6: Jen didn't think she needed a DVS system.
7: Oh, I've got insulation in that.
6: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
7: Ah, yeah.
6: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings, like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Merikau and Pokekohe, celebrating 36 years of great sleep.
9: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
10: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
11: Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant!
10: In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
12: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
13: Hitting the open road these school holidays? Refuel at Zed with Afterpay. Shop snacks, fuel and more, and pay in four. Shop now with Afterpay at Zed. Fees, TCs and eligibility criteria apply.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Saturday breakfast mein hum aaye hain Jugaad Junction par.
14: That's right, ये है जुगाड़ जंक्शन हम पर, और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अभी का साथ है ऑन द 18th of July। जबकि बातें हो रही हैं कुछ टिप्स की, तो अक्सर हम स्ट्रगल करते हैं अपने कपड़ों को अपने ड्रोवर्स में रखने के लिए, क्योंकि वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ स्पेस, और काफ़ी समय हम सिर्फ उनको चक कर देते हैं ड्रोवर्स में, और वो वैसे के ही वैसे पड़े रहते हैं। और फिर जब आप निकालते हैं अपने ड्रोवर्स में से कोई भी कपड़ा, तो आपको पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है ये भी नहीं दिखती। तो एक लाइफ हैक, यानी कि एक टिप आपके लिए है कि ड्रोवर्स में जब आप अपने कपड़ों को, खासकर टी शर्ट्स को या ऐसे कोई कपड़े हैं जिसे आप रखते हैं, तो रोल रादर देन फोल्ड। यानी कि अभी तक हम फोल्ड करते थे या फिर उनको सिर्फ एक जल्दी से क्रम्बल करके ड्रॉ में रख देते थे, लेकिन अब अगर जो कपड़ों को आप रोल करोगे और नीटली उनको रखोगे, तो दो एडवांटेज है कि आपके ढेर सारे कपड़े उस ड्रॉ में अट सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप ड्रॉ खोलोगे तो रोज़ में आपको कपड़े दिखेंगे और उनमें से आप चूज़ कर सकेंगे कि कौन सा आपको आज पहनना है। जबकि पहले पहल जब आप रखते हैं तो आपको सारे के सारे सेलेक्शन देखने को नहीं मिलता, तो रोल करके ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइएगा 5599 पर कि क्या ये टिप आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।

हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर, मैं हूं अभी आपके साथ में और यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आपको बता दें राज गढ़वी ये आ रहे हैं और इनको प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं लोटस प्रोडक्शन, साथ में श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप। और ये लेकर आ रहे हैं गरबा विद राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड। आपके पास में एक मौका रहेगा जहाँ पर इस गरबे में आप शामिल हो सकते हैं। लॉट्स ऑफ फन, म्यूजिक और मस्ती, ये सभी कुछ रहेगी। सैटरडे 1st of August को ये जो प्रोग्राम है रहेगा है दी महात्मा गांधी सेंटर, एक एपिक सेलिब्रेशन। जैसा कि हमने कहा है, एक मौका है आपके पास में इसमें पार्टिसिपेट करने का। और इवेंट्स टिकट्स न्यूजीलैंड, याद रहे इवेंट्स टिकट्स न्यूजीलैंड, और यहाँ पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं eventstickets.co.nz शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पर जाकर आप अपने टिकट्स अभी से ही ले सकते हैं। और या फिर और जानकारी चाहिए तो स्वप्निल को कॉल कीजिए 0224394736 पर, 0224394736 पर। और राज गढ़वी के साथ में गरबा मनाने का, सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता दोबारा।

0: Junction on Saturday Breakfast.
1: जी हाँ, हम पर यह है जुगाड़ जंक्शन, और जुगाड़ जंक्शन में अभी का साथ है। और पिछले रिपोर्ट में कशिका जी ने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने बताया, आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर यानी कि 110 वैराव रोड वैराव वैली में नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट में फ्री कशिश फूड्स की सैम्पलिंग हो रही है। और क्या क्या लिस्ट उन्होंने बताया। मैं स्टूडियो में फंसा हूँ और कशिका जी हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर हो गई लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ में। कशिका जी, आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच। अभी देखो, मैं तुम्हें और भी ललचाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आ जाती हूँ, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, वहाँ कोशिश होती है हम के लिसनर्स के लिए मैं ढेर सारे स्पेशल्स लेकर आऊँ। पहली बात तो ये फूड टेस्टिंग हो रही है, जहाँ आपको डिफरेंट ये अवार्ड विनिंग मोमोज जो है सैम्पलिंग के लिए मिल रहे हैं, शुद्ध देसी घी के आपको गुलाब जामुन टेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं, और कशिश फूड्स की डिफरेंट चटनीज जो है ये भी आप सैम्पलिंग में टेस्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ किचिया। अच्छा चलो, ये सब हो गया। अब मैंने कहा भाई, कशिश के साथ जब इतना सारा हमारा काम चलता है तो क्यों नहीं कशिश से बात करके कशिश पे डिस्काउंट्स ले ले बाकी आइटम्स पे। तो हमने क्या किया कि अगर आप ये गुलाब जामुन लॉन्ग वाले, गोल वाले, रसमलाई या कशिश के आप रसगुल्ले लेंगे, इट्स ओनली गोइंग टू कॉस्ट यू $499 फॉर 1 kg। कशिश के रोस्टेड चना 800 grams इज जस्ट गोइंग टू बी $499, एंड कशिश की चटनी 2 आपको मिलने वाली हैं, और इस ये भी डील में आपको 999 में मिलेंगी। कशिश के बहुत सारे आपको यहाँ पे अचार ये 299 में मिल रहे हैं, एंड कोको ब्लिस यानी कोकोनट वाटर 1 liter 2 मिलने वाले हैं $5 में, और फूल मखाने जो होते हैं कशिश के वो आपको 999 के मिल रहे हैं। 250 grams कशिश का पोहा इस फॉर 1 kg आप लेके जा सकते हैं $5 में। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन मेरे पास टेक्स्ट आया है अभी, उन्होंने कहा घी वगैरह है, तो मैं बता देती हूँ कि कशिश का घी 700 ml इज ओनली फॉर 999, एंड कशिश मलाई पनीर इज जस्ट फॉर 899। तो भाई किस बात का इंतजार है? इंतजार इसी बात का है कि आप कशिश फूड्स के इस सैम्पलिंग के स्टैंड पर पहुंच जाए एट नमस्ते इंडिया वायरो वैली में। भाई बहुत जबरदस्त गर्मा गर्म मोमोज खाने को मिल रहे हैं। ये ललचा रही हूँ मैं आपको इसीलिए क्योंकि मुझे भी मौका मिलेगा ये मोमोज खाने के लिए और टेस्ट करने के लिए, और अभी को ल्योर करने के लिए कि अभी जल्दी आओ यहाँ पर आके सैम्पलिंग करो नमस्ते इंडिया सुपरमार्केट में।
1: थैंक यू सो मच।
2: आओगे? आ रहे हो ना?
1: बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा और आकर आपके साथ में ये फ्री सैम्पलिंग जरूर करेंगे।
2: बिल्कुल, बस नाउ टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियोज। थोड़ी देर बाद हम फेसबुक लाइव भी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा हमारे जो स्पेशल्स हैं यहाँ कशिश के एट नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट, उन्हें देख के वाकई आपके दिल में कशिश आने लग जाएगी।
1: लवली, ये थी कशिका अपने रिपोर्ट के साथ में, और अभी तक तो आपको रेडियो पर बता रही थी लेकिन फेसबुक लाइव करके आपको दिखाएंगी भी क्या क्या स्पेशल्स यहाँ पर चल रहे हैं और कैसे जाकर आप इन सभी डील से फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ी देर में और भी बातें होंगी कशिका जी से, और लेटेस्ट अपडेट्स क्या कुछ स्पेशल्स चल रहे हैं ये आपको बताएंगे नमस्ते इंडियन सुपर मार्केट से।

0: हम पर जुगाड़ जंक्शन में कुछ टिप्स आपको देते रहते हैं, और अब की बार आपको बता दें, अगर जो आप कोई पेंटिंग घर पर कर रहे हैं और इसके लिए आप यूज़ करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं पेंट ट्रेस को, या फिर समय आते आते आप अपने डेक को भी स्टेन करेंगे, तो अक्सर हम पेंट ट्रेस को यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें जो स्टेन गिराने से पहले या फिर पेंट गिराने से पहले आप इसको फॉइल से कवर कर लें, और फिर क्या होगा, जब आप अपने पेंटिंग को फिनिश कर लेंगे उसके बाद में जब ये फॉइल कवरिंग आप निकालेंगे, आपका पेंट ट्रे बिल्कुल नया का नया।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: Max is that all killer, no filler.
5: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
4: Exactly.
5: Right, we'll see. What are they called?
4: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
5: Whoa, okay, I get it. Fair call.
4: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
6: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
7: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
8: IKEA.
9: It's bonus time at Nolimi. Spend over $899 on selected products and get a $250 bonus gift card. In Sunday, 19 July. Don't miss out. Plus, flexible payment options to suit you. Conditions apply. Only at Nolimi.
10: TradeDepot.co.nz.
11: Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Midea 16-litre dehumidifiers, $219. Espresso machines, $109. Cordless stick vacuums, $99. Air fryers, $79. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online.
10: TradeDepot.co.nz.
12: Please use your imagination for the following ad.
13: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
12: Imagine winning $30 million this Saturday. Play in store or online.
14: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast mein hum aaye hain Jugaad Junction par.
0: That's right, जुगाड़ जंक्शन में मैं हूँ अभी आपके साथ में। अक्सर आपके घर पर टीवी रिमोट्स को ढूंढा जाता है और आपको पता नहीं रहता कि रिमोट्स किसने लास्ट यूज़ किया है और कहाँ रख दिए हैं। तो आपको बता दूं कि टीवी रिमोट्स के लिए आपको जुगाड़ जंक्शन में वेलक्रो रैप्स आप यूज़ कर सकते हैं रिमोट के पीछे, और आप इसे अटैच कर सकते हैं शायद अपने कॉफ़ी टेबल के साथ में या फिर अपने सोफ़ा आर्म पर। तो ऐसे ही करके आपके लिए एक पर्मनेंट जगह हो जाएगा जहाँ पर आप रिमोट्स बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम। बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
15: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
0: हम पर आज के लिए जुगाड़ जंक्शन में बस इतना ही था, और अगले वीक आपके लिए कुछ नया टिप्स लेकर आएंगे। लेकिन अभी 11 बजे के बाद में आपके लिए रहेगा देसी बिज शाउट आउट, जहां पर आपको मौका देंगे कुछ ना कुछ अपने बिजनेस के लिए प्रमोट करने के लिए। ऑल ऑफ दिस आफ्टर 11। लेकिन फिलहाल के लिए राहत फतेह अली खान को शामिल करते हैं प्रोग्राम में।

0: Head into Bunnings today and grab the Surf Professional 9kg laundry powder for just $39. Available in Sun Fresh and Rose Fresh. Don't miss this great value. Stock is limited. Shop online or in-store at your local Bunnings warehouse. Bunnings warehouse.
1: Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected Bip brand clothing, footwear and more. There's adults hoodies and sweats from $49, kids hoodies and sweats from $35. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See your night for T's and C's.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए हर मील हेल्दी और डिलिशियस हाई प्रोटीन रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर ये है हर घर का बेस्ट चॉइस अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध आज ही करें ट्राई आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है स्वाद भी सेहत भी
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: You're listening to Avineet.
1: समय इशारा कर रही है कि 11 बज चुके हैं और हम पर अब समय हुआ सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में आपके लिए लेकर आए देसी बिज शाउट आउट, जहां पर आपके पास में मौका है आप अपने स्मॉल स्केल

बिजनेस को और भी बड़ा कर सकते हैं, या फिर होम बेस्ड बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपने लोकल एरिया में कि आप कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सभी कुछ आप कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में हम पर न्यूजीलैंड्स नंबर वन रेडियो स्टेशन। आपको सिर्फ क्या करना होगा, अपने बिजनेस के बारे में आप टेक्स्ट कीजिए 5599 पर और यहां से आपको एक शाउट आउट देंगे ताकि और लोग भी जान सके कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलरिंग है या फिर म्यूजिक ट्यूशंस आप दे रहे हैं, या फिर फ्लावर्स आप घर से बेच रहे हैं, या फिर वेजीज है जो आपने प्लान किया है और इसको बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 5599 पर आप मैसेज कीजिएगा, हाँ एज लॉन्ग एज इट्स लीगल, और आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में यहाँ से हम प्रमोशन करते रहेंगे। दिस इज व्हाट दिस आवा इज फॉर, गोल्डन आवा है जहाँ पर आपके लिए, आपके पास में सुनहरा मौका है अपने बिजनेस के बारे में और भी आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। अभी से ही मैसेज कर दीजिए ताकि समय पर आप इस नहले पर दहला मार सके।

0: डेसीबी शाउट आउट में अभी का साथ है और जो सबसे पहला पहल मैसेज आया है टाइलिंग एंड वाटर प्रूफिंग बिजनेस है। जी हाँ, आपको टाइलिंग करवानी है घर पर या फिर वाटर प्रूफिंग करवानी है तो आप PB25 टाइलिंग एंड वाटर प्रूफिंग लिमिटेड को कॉल कर सकते हैं 02040584277 पर। वाटर प्रूफिंग यानी कि अगर जो बाथरूम के साथ में अगर जो किसी तरह से कोई लीकेज वगैरह है तो वाटर प्रूफिंग आप करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको टाइलिंग करवानी है नए के नए तो PB25 टाइलिंग एंड वाटर प्रूफिंग 02040584277 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी हमारे पास में अपना जो मैसेज है भेज सकते हैं और ताकि आपके बारे में हम बता सकें। और अगर जो आपको ऑल्टरेशंस करवानी है, साथ में नए कपड़े सिलवाने हैं, फ्लैट बुश इलाके में आप है तो रोशनी को कॉन्टेक्ट कीजिएगा 02113256626। जी हाँ, रोशनी को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल योर टेलरिंग नीड्स 02113256626 पर, और ये आपके लिए बिल्कुल उम्दा काम करके देंगी आपके टेलरिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू। सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।

0: बेईमान।
1: हम पर देसी बीस शाउट आउट में और ये कारवा चल रहा है। गुरप्रीत सिंह ये ऑपरेट कर रहे हैं मेव कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड, जो स्पेशलाइज करते हैं कंक्रीट ड्राइववे और साथ में एनी टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क या फिर डेकिंग या फिर फेंसिंग आपको करवानी है। अगर जो आपके फेंसिंग में कुछ रिपेयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत है या फिर आप सोच रहे हैं समा के लिए अब की बार डेक थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे या फिर नया डेक बनवाएंगे, तो आप अभी से ही गुरप्रीत को कॉल कीजिए ऑन 02133114 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, ताकि ये आकर आपके लिए जितने भी कोटेशंस वगैरह है ये कर सकते हैं। आपको भी इसी तरह से एडवर्टाइज करवानी है या फिर लोगों तक अपने बिजनेस के बारे में न्यूज़ पहुंचानी है, तो आपको सिर्फ 5599 पर हमारे पास में मैसेज करना होगा।

जी हाँ, देसी बिज शॉर्ट आउट में मैं हूँ अभी आपके साथ में। और एक ऐसी बिजनेस है जो आपके फायर सेफ्टी को लेकर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। नमीश ऑपरेट करते हैं द लोकल गाइस टेस्ट एंड टेक। ये कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैं आपको बता दूं। ये ऑन साइट इलेक्ट्रिकल टेस्ट एंड टेक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट फायर सेफ्टी चेक्स करते हैं। अगर जो आपकी खुद की प्रेमिसेज है, बिल्डिंग है, या फिर आप कोई शॉप ऑपरेट करते हैं जहां पर आपको सेफ्टी को ध्यान में रखकर फायर चेक्स करवाने हैं, तो आपको सिर्फ नमीश को कॉन्टेक्ट करना होगा। इसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर सर्विसिंग भी करते हैं, आपके लिए फायर हाउस रील टेस्टिंग भी करते हैं और फायर ब्लैंकेट इंस्पेक्शंस भी करते हैं। ये सभी के सभी काम नमीश आपके साइट पर ही कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको मिनिमम डिसरप्शन रहे आपके खुद के बिजनेस के लिए और आपकी टीम, आपकी बिजनेस, आपकी प्रेमिसेस बिल्कुल सेफ रहे। और अगर जो आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नमीश को कॉल करें 0210277 0160। याद रहे 0210277 0160, या फिर आप namish.chan@thelocalguys.co.nz पर ईमेल कर सकते हैं फॉर अ फ्री कोट। ऐसे ही आपको भी अपने बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर। इसके अलावा आपको बता दे, घर पर कोई पार्टी है, फंक्शन है और आपको डेकोरेशंस करवाने हैं, देट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कि आपको डेकोरेट करना पड़ता है। और डेकोरेशंस के लिए इस काम को और आसान बनाने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नाज डेकोरेशंस एंड पार्टी हायर लिमिटेड, और ये आपके लिए डेकोरेट भी करेंगे और जितने भी आपको सामान चाहिए अपने पार्टी के लिए इनसे आप हायर भी कर सकते हैं। ये वेडिंग्स करते हैं, बर्थडेज करते हैं, सारे के सारे इवेंट्स करते हैं। तो नाज को सिर्फ कॉल करें 0211788745। याद रहे 0211788745 पर आप नास को कॉल करके आप इनसे बातें कर सकते हैं, ताकि नास आपको अपने जो प्रीमियम सर्विसेज है ये प्रोवाइड कर सकते हैं विद नास डेकोरेशंस एंड पार्टी हायर लिमिटेड। और डेकोरेशंस साथ में पार्टी हायर के लिए एक ही नंबर है 0211788745। आपको भी कुछ बताना है अपने बिजनेस के बारे में तो 5599 पर टेक्स्ट कीजिए।

0: देसी बिज में आगे बढ़ते हुए ए टू जेड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस लिमिटेड ये आपके लिए आपके डिजिटल लॉक स्पेशलिस्ट है, साथ में और भी काम ये करते हैं। आप सिर्फ कॉल कीजिए और ये आपके लिए कोटेशंस और साथ में सर्विसेज और रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं 0274483404 पर, 0274483404 पर, और ए टू जेड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस लिमिटेड ये आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं आपके सर्विस, आपको सर्विस देने के लिए।
1: Saturday Breakfast on Hum.

0: आप सुन रहे ब्रेकफास्ट शो विद अभी, और एक बार फिर कशिका जी रेडी हो गई हैं लेटेस्ट अपडेट्स लेकर नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट 110 वेराव रोड वेराव वैली से, और भी स्पेशल अपडेट्स और साथ में टेस्टी इन्फॉर्मेशन लेकर कशिका जी शामिल हो गई हैं।
1: थैंक यू सो मच अभी, एंड यस बहुत मजा आया। हमारे लिसनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे वार्म अप हो रही है जगह, और वार्म अप मतलब गर्मा गर्म मोमोज खाने को भी मुझे मिल रहे हैं, और गर्मा गर्म गुलाब जामुन। और ये नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट वायरो वैली में जो है हंगामा हो रहा है, आप भी पहुंच जाइए। एंड यू आस्क्ड मी अभी अबाउट बैटर, डोसा बैटर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज ये फ्रेश बैटर आपके लिए 750 ग्राम्स 499 में कशिश का मिल रहा है, और कशिश के आपको अदरक लहसुन के पेस्ट जो है 500 ग्राम्स के ओनली फॉर 299 आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट कशिश का यहाँ से खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल आप नोट करेंगे कि फ्री में 250 ग्राम्स का जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आपको मिल सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने फेसबुक लाइव पे भी आपको बताया था कि कशिश के रोजाना चावल जो है 20 केजीज इज जस्ट फॉर 39.99, वाओ, एंड रोजाना 5 किलोज कशिश का इज 10.99, एंड आटा कशिश का गोल्ड का इज 9.99, चक्की आटा 10 किलोज इज जस्ट फॉर 11.99, एंड कशिश का मलाई पनीर इज जस्ट फॉर 8.99। टॉप इट अप अगर आप इसे करना चाहते हैं 9.99 में आपको कशिश का घी मिल रहा है 700 ml। वैसे यहाँ फूड टेस्टिंग के लिए अगर आप आएंगे फेसबुक के पेज पे चले जाइए, आके यहाँ का नजारा जरूर देखेगा क्योंकि बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें हैं। अभी मुझे खाना है तो अभी मैं थोड़ी देर में बात करूं।
0: बिल्कुल, जबकि आपको खाना है तो आपको जाना पड़ेगा।
1: थैंक यू।
0: 11:40 पे एक बार फिर आपसे बातें होंगी विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच कशिका।
1: थैंक यू।
0: तो ये थी कशिका जी विद लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रही थी, और आपको भी सिर्फ जाना है वेराव वैली, जी हाँ 110 वेराव रोड, जहाँ पर नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट में कशिका जी है, साथ में कशिश फूड्स की सैंपलिंग और स्पेशल्स दिए जा रहे हैं।
2: ये चांद का रोशन चेहरा

जी हाँ, ये है देसी बी शॉर्ट आउट। और अगर जो घर पर आपको हीट पंप्स इंस्टॉल करवाने हैं या फिर सर्विसिंग करवानी है जबकि विंटर है, तो ऐसे में हीट पंप्स का चलना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सिर्फ मो जहीर को कॉल करें ऑन 02208018 17। याद रहे मो जहीर को 02208018 17 पर आप कॉल करें। ये आकर आपके घर पर ही सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। और जितने सर्विसिंग है, फिल्टर्स वगैरह साफ कराने हैं आपको हीट पंप्स के लिए, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ अगर जो आपको अपने घर के लिए टॉयलेट एडवर्टाइज करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज आया है और ये पढ़ते ही मुझे फिजी की याद आ गई। विंडम देनाराव फिजी में 2-bedroom एकोमोडेशन अवेलेबल है जुलाई 23 से। अगर जो आप छुट्टियां मनाने फिजी जा रहे हो तो 23 जुलाई ऑनवर्ड्स यहां पर 2-bedroom अकोमोडेशन विंडम में, विंडम डेनेराव फिजी में बिल्कुल अवेलेबल है। इसके लिए आप 02188280 पर कॉल कर सकते हैं। 02188280 पर आप कॉल करें ताकि जो फिजी एक पैराडाइज है, इसका मज़ा आप विंडम से ले सकते हैं। आपके पास में भी कोई जानकारी है जिसके बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आप हमारे पास में टेक्स्ट कीजिए 5599 पर। एक 1-bedroom ग्रेनी फ्लैट है अवेलेबल फॉर रेंट स्ट्रेट अवे, और ये है पेरेहिया रोड फ्लैट बुश में। यहाँ पर जाकर 1-bedroom जो ग्रेनी फ्लैट है आप इसे व्यू कर सकते हैं। और इस ग्रेनी फ्लैट के रेंटल में आपको इंक्लूसिव मिलेगा वाईफाई, साथ में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और साथ में गैस। तो ये सभी कुछ इंक्लूसिव है, सूटेबल फॉर यंग कपल या फिर वन पर्सन। और अगर जो आप इसको व्यू करना चाहते हैं, ये फ्लैट बिल्कुल अवेलेबल है। 02242900020 पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आप इसे व्यू कर सकें। आप भी कोई होम बेस्ड बिजनेस है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स को बताना चाहते हैं, तो 5599 इज़ द नंबर।

हम पर यह है देसी बिज शॉर्ट आउट, और यहां से जबकि आपके बिजनेस के बारे में एडवर्टाइज करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं उन्हें, तो कनेक्शंस बनाते हैं। जैसे कि एक मैसेज आया है, भाई व्हाट्स द नंबर फॉर विंडम एड, और विंडम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अकोमोडेशन, विंडम डेनराव फीजी, आपको सिर्फ कॉल करना होगा 02188288 पर आप कॉल करके अपने जो अपकमिंग ट्रिप है इसके लिए अकोमोडेशन आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। इसके साथ में फ्लाइट कार्ट, जहां पर आप ट्रेवल, एक ऐसी ट्रेवल एजेंसी है जहां पर आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं, वन स्टॉप शॉप है आपके लिए, और साथ में अफोर्डेबल एयर टिकट्स तो है ही, इसके अलावा ये ट्रेवल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर जो आपको अकोमोडेशंस अरेंज करने हैं या फिर क्रूज़ पे जाना चाहते हैं, ये सभी कुछ आपके लिए ये करते हैं। फ्लाइट कार्ट को आप कॉल करें ऑन 02211 1134 02211 1134 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में एक और एक मैसेज आया है, प्लीज़ रिपीट दी वन बेडरूम ग्रैनी फ्लैट, और जो वन बेडरूम ग्रैनी फ्लैट है ये पेरेयर रोड फ्लैट बुश में अवेलेबल है, सूटेबल फॉर सिंगल ऑक्यूपेंट या फिर यंग कपल, और इसके साथ में जो रेंट है उसमें इंक्लूसिव है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाईफाई और गैस। और अगर जो आप चाहते हैं व्यूइंग करने के लिए, तो 02242900020 पर आप कॉल करें। ये जो वन बेडरूम ग्रैनी फ्लैट है ये फ्लैट बुश में अवेलेबल है, अवेलेबल स्ट्रेट अवे, और व्यूइंग भी आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। आपके पास में भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप देना साथ चाहते हैं, तो 5599 इज़ द नंबर, यहाँ पर आप हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं। जबकि जो समय है तेज़ी से भागा जा रहा है, तो बहुत देर तक आज आपके लिए देसी बीज शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, तो अभी भी आपके पास में मौका है, आप हमारे पास में इसे भेज सकते हैं।

0: खुश
1: देसी बीस को आगे बढ़ाते हुए एक टू बेडरूम यूनिट मॉडर्न न्यूली बिल्ट है जो अवेलेबल है हेंडरसन हाइट्स में एक अच्छे स्कूल जोन में ये फुल होती है एंड इट्स ओनली फॉर $540 इंक्लूडिंग वाईफाई. याद रहे एक टू बेडरूम यूनिट मॉडर्न न्यूली बिल्ट अवेलेबल है फ्लैट और इसमें वाईफाई भी इंक्लूसिव है इन हेंडरसन हाइट्स जो एक अच्छे स्कूल जोन में फुल होती है और $540 रेंटल है और आप इनको कॉल कर सकते हैं 022-111-1034 पर 022-111-1034 पर आप इन्हें कॉल करके बातें कर सकते हैं फॉर अ फ्लैट इन हेंडरसन हाइट्स.
2: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट
3: लेडीज एंड जेंटलमैन
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: सार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected Bip brand clothing, footwear and more. There's adults hoodies and sweats from $49, kids hoodies and sweats from $35. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See your night for T's and C's.
4: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian designed award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: That's right, आप सुन रहे हैं Saturday Breakfast Show with Avi on Hum, playing Bollywood's biggest hits. और एक बार फिर कशिका जी with the final report शामिल हो गई है नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से, जो सिचुएटेड है 110 वेराव रोड इन वेराव वैली. और यहां से आपको स्पेशल्स के बारे में बता रही हैं with the final report. कशिका जी, आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच. नमस्ते टू यू एज वेल अवि, एंड नमस्ते टू ऑल द लिसनर्स जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं. मैं वैसे नमस्ते इंडियन सुपर मार्केट में हूँ, जो वैरो वैली में है, नॉर्थ शोर की तरफ. अगर आप हैं तो डेफिनेटली यहाँ आइए, क्योंकि कशिश फूड्स का एक टेस्टिंग का बूथ बना हुआ है, जहाँ पर आपको मोमोज, बाउबन, साथ साथ आपको यहाँ के गुलाब जामुन, तरह तरह की चटनियाँ और खींचिया, ये सब खाने को, टेस्ट करने को मिलने वाली है. और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलने वाले हैं. लेकिन यू नो व्हाट हैपेंस, कभी कभी जब आपके लिसनर्स आपको सुनते हुए दौड़कर आपसे प्यार करने के लिए आते हैं, जादू की छप्पी देते हैं ना, तो समझ लीजिए वाओ. लेकिन इस समय मेरे साथ एक बहुत ही क्यूट से सुपरस्टार बच्चे हैं, और मैं इनसे हेलो कहलवाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी भी कशिश फूड्स के मोमोज को टेस्ट किया. हाय एंड हाउ आर यू एंड व्हाट्स योर नेम?
3: प्रणय.
2: प्रणय, आपने क्या खाया?
3: मैंने मोमो खाया, चना खाया, गुलाब जामुन खाया, पापड़ भी खाया.
2: और आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
3: सारे.
2: और आप बोल रहे थे कि रेडियो किस तरह से हमें सुनना चाहिए, ये भी बता दीजिए.
3: एक रोवा पे सारी दुनिया से लिसनर सुनाई दे रहा है.
2: ओ माय गॉड, देखो इससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हमारे लिए कोई नहीं होगा जो कह रहा है रोवा से आप पूरी दुनिया भर में सुन सकते हैं, विच इज सो ट्रू. थैंक यू प्रणय. एंड सर, आपको कैसा लगा? आपका नाम?
4: जी, मेरा नाम रोशन है. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे कशिश फूड्स का स्टॉल लगा हुआ है, एंड आई ट्राइड मोमो. आई वाज यू नो, मतलब मैं खोज रहा था प्रसूमा मोमोज, एंड आई फाउंड इट हियर. आई आस्क माय वाइफ, लेट्स गो, यू नो वी स्टे नियर बाय, सो हम आए, हमने ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई विल डेफिनेटली यू नो गेट फ्यू प्रसूमा मोमोज एंड गुलाब जामुन एज वेल. थैंक यू कशिका जी, एंड थैंक यू हम एफएम, एंड डेफिनेटली थैंक्स टू कशिश.
2: एंड आपने तो यू टर्न मारा गाड़ी का. आपका नाम?
5: मेरा नाम प्रतिमा है.
2: एंड प्रतिमा, क्या सुनते सुनते आ रहे थे, क्या हुआ?
5: हम तो ऐसे ही जस्ट वॉक के ऐसे ही निकले थे फ्री टपरी के लिए, फिर हमने सुना तुम लोग ट्राई दिया जाए कशिश प्रोडक्ट को, तो के लिए यहाँ पे आए. एंड प्रसुना का नाम सुना था, तो हमने सुना जरा प्रसुना को भी ट्राई किया, हम यहाँ पे.
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच. एंड यस, ये देखिए इस तरह से प्यार इनका खींच लेके हमारे पास आ जाता है. और कशिश फूड्स आज यहाँ पर आपके लिए रहने वाले हैं दिन में, और आपके लिए बहुत सारी फूड टेस्टिंग के मोमेंट्स लेकर आ रहे हैं. लेकिन बिफोर आई गो, मुझे एक बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि कशिश के जो बैटर हैं, इडली बैटर एंड वड़ा, इसके लिए भी आपको 1.5 लीटर्स का 799 में मिल रहा है. और इसके साथ साथ आपको जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट कशिश का यहाँ से खरीदेंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट 250 ग्राम्स का आपको वो भी फ्री में मिलने वाला है. अगर 1 kg का आप पैक अगर कशिश का खरीदना चाहते हैं वो 499 में आपको मिलेगा. 20 kilos का रोजाना बासमती राइस जो है कशिश का 3999 का, एंड साथ साथ कशिश का गोल्ड आटा 5 kilos इज 999, एंड 10 kilos इज 1199. पनीर मलाई आपको 899 में मिल रहा है, एंड कशिश का घी आपको 999 में मिल रहा है. कशिश की खिचिया जो अभी टेस्ट किए हमारे प्रणय ने, 199 की रेंज से स्टार्ट होता है. एंड कशिश का थिक पोहा आपको मिल रहा है 245, एंड फूल मखाने जो है 999 में आपको मिल रहा है. माय फेवरेट कोको ब्लिस कोकोनट वाटर 1 लीटर 2 आपको $5 में मिल रहे हैं. और जो वेरियस चटनीज यहाँ आके आप ट्राई करेंगे काउंटर पर, तो वो आपको 2 मिल रही हैं फॉर द प्राइस ऑफ 2. कितने के प्राइस पे मिल रही है यहाँ पर?
6: $1 for $2.99.
2: ओ वाओ, फैंटास्टिक. एंड रोस्टेड चना 800 grams इज जस्ट फॉर 499, एंड नॉट टू फॉरगेट माई फेवरेट गुलाब जामुन और रसगुल्ला, एंड साथ साथ रसमलाई 499 का आपको 1 kilo का डब्बा मिल रहा है. तो भाई आप लोग भी आइए, आके कशिश फूड्स के इन अमेजिंग प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए. हमारे फेसबुक के पेज पे भी चले जाइए, आपको यहाँ पर आके एक नज़ारा देखने को मिलेगा. और साथ साथ एक चीज जो मुझे भी यहाँ पे बताया जा रहा है कशिश फूड्स के टीम मेंबर्स ने, कि मैं भूलना भूल गई कि कशिश फूड्स गुलाब जामुन आर मेड विद शुद्ध देसी घी, एंड देर इज नॉट वन बट देर आर 16 pieces इन 1 डब्बा, विच इज रियली अमेजिंग. चलिए इसी के साथ साथ मैं यहाँ से नमस्ते करती हूँ फ्रॉम नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मीटिंग ऑल ऑफ द पीपल हु हैड कम स्पेशली टू से हाय टू मी एज वेल बट टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियो दिस इज काशिका एंड यस प्लीज डू कम एंड विजिट द कशिश फूड्स फूड स्टॉल फॉर टेस्टिंग टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियोज बाय
1: ये थी कशिका जी और लाइव अपडेट्स और रिपोर्ट्स दे रही थी आपको 110 वेराव रोड वेराव वैली से जहां पर ढेर सारे स्पेशल्स लगे हुए हैं आप भी हमें सुन रहे हैं जाइए जा पहुंचिए नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट और यहां पर जो स्पेशल्स चल रहे हैं इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाइए

0: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और आपको बता दे लगे हाथों कि हम पॉडकास्ट जो है अनफिल्टर्ड, यहां पर ब्रेकिंग बैरियर्स को लेकर शनील लाल ने काफ़ी बातें की हैं LGBTQ को लेकर और उनके राइट्स को लेकर। तो अगर जो आपको भी कोई सपोर्ट चाहिए और शायद आप कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी, तो ये सभी कुछ आप कर सकते हैं। ड्राइव लिखिए, 5599 पर भेजिए और जो पूरा का पूरा ऑडियो है आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट कैचअप अगर जो आप मिस कर देते हैं तो BF लिखकर 5599 पर लिखिए और पूरा का पूरा पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। एंड जी हाँ, एक और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे अपने केतन ने सफाया 2.0 जो रिलीज किया है, अगर जो आपने यूट्यूब पर अभी तक इसे नहीं चेकआउट किया है तो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा गाया है केतन ने और काफ़ी अच्छा इस वीडियो को शूट भी किया है। गाना तो हम आपको सुनवा सकते हैं, लेकिन वीडियो चेकआउट करने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना होगा, और जब आप वीडियो देख रहे हो उसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि केतन को भी लगे कि हाँ, जो मैंने काम किया है बिल्कुल उम्दा है, बढ़िया है और फर्स्ट क्लास गाते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से आप केतन को भी सपोर्ट करते रहिए, और ये सभी कुछ बातें हैं आपके साथ में और 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इन द मीन टाइम कुछ एक दो गीत आपको और सुनवाते हैं, उसके बाद में फिर हम आपसे अलविदा लेंगे।
1: Desi Biz shout out on Saturday breakfast. Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम

आज के लिए सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में बस इतना ही। आपने सुबह 6 से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे कल मुलाकात होगी, लेकिन आज के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद खुश रहे, औरों को भी खुशी दीजिएगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ और आगे का जो प्रोग्राम है, जी काश एक बार फिर वापस आ गए हैं छुट्टियाँ बनाने के बाद में, और ये लेकर आएंगे आपके लिए रेडियो पब। हमारी मुलाकात अब कल आपसे होगी। इन द मीन टाइम डू टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे।